सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में कामयाबी का हिसाब कैसे करते हैं आप? पद से, पहचान से, पैसे से या पुरस्कार से? किसने कितना कमाया उससे, या किसने कौन सा मुकाम हासिल किया उससे, या फिर किसने कितनों को सपने देखने की वजह दी, कितनों को खुद पर यकीन करना सिखाया, कितनों को अपने देश पर गर्व करने का मौका दिया। कुछ हफ्ते पहले चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके, ना प्रतिष्ठित उबर कप में, लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। भारतीय फैंस ने बुधवार को लक्ष्य सेन की हार देखी। गुरुवार को देश की दुलारी पीवी सिंधु और युवा सितारे आयुष शेट्टी को टूर्नामेंट से बाहर होते देखा। शुक्रवार को अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गोल्डन बॉयज की जोड़ी यानी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बावजूद शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आठ हजार से ज्यादा दर्शक ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में

0: अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था, जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।
1: They are one of the ideals for us. The women's doubles that they made created histories in India.
0: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पुनप्पा भी प्रभावित हुई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
2: Both Gayatri and Trisa can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Trisa, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Trisa.
0: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप। हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी।
3: From China, ल्यू शेंग शू एंड टान निंग।
0: लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी। बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता। और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ा। लेकिन टान और लियू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी। 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई। दर्शकों ने फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साहवर्धन करना नहीं छोड़ा। और भारतीय जोड़ी ने वापसी भी की। 24 मिनट तक चला ये पहला सेट किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसा था, उतार चढ़ाव से लबरेज। अंततः गायत्री और ट्रीसा ने इसे 21-18 से जीत 1-0 की बढ़त हासिल की।
4: Playing with this Chinese players, I feel like we were bit more confident in the first game. Even when we were leading in the first half, then they covered into 11-7. They just took the break, and again we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them.
0: दूसरा सेट भी उसी तर्ज पर शुरू हुआ। मिड गेम ब्रेक तक गायत्री और ट्रीसा 11-10 से आगे थीं, पर फिर जैसे उफनती नदी अचानक सूखने लगी, रफ्तार भी थमती चली गई। अभी तक कुछ बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का मुजाहिरा कर पॉइंट्स जीतने वाली ट्रीसा से उन्हीं शॉट्स को खेलने में गलतियां होने लगी।
4: बट इन द सेकंड गेम वी डिडंट गेट द रिदम, आई फील लाइक इन द आफ्टर द सेकंड गेम सेकंड हाफ, आई फील लाइक दैट टाइम द फ्यू मिस्टेक दैट मेड अस लिटिल बिट अनकॉन्फिडेंट, आई फील लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ डाउटफुल अबाउट एवरी स्ट्रोक्स व्हाट वी आर प्लेइंग, आई फील लाइक या।
0: गायत्री से भी कुछ मौकों पर चूक हुई।
5: वो लोग काफी पेशेंटली खेले, वी कुडंट मैच बोथ ऑफ दोस थिंग्स। थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे, पर रिदम नहीं आया।
0: और चीनी जोड़ी ने भरपूर फायदा उठाते हुए 21-13 से दूसरी गेम जीत मैच में बराबरी हासिल की। तीसरी गेम में टान और ल्यू ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है और 21-8 से उसे जीत फाइनल का टिकट बुक कर लिया। कोच गोपीचंद पुलेला कोर्ट साइड पर मौजूद थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनकी शिष्याओं से गलतियां हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि चीनी जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया।
6: Still the second game mid part they were quite there in the match and suddenly they didn't contact the shuttle as much and then they just lost it. But also credit to the Chinese girls because they were serving very well because there was a good amount of spin and tumble on the serve and then on the first return they were hitting very hard on the parallel. So I think Gayatri's and Trisa's chance of getting on the attack from the very beginning was not happening. But overall happy with the way they've played.
0: जब चीनी जोड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से तो वो इस मुकाबले के लिए तैयार थे ही, पर उसके साथ भारतीय फैंस की जनगर्जना का भी उन पर कुछ ज्यादा असर हुआ नहीं।
7: Currently play with them. We had to make specific plans, strategies to play against them. They will get support from the home crowd. So it was a very normal thing for them.
0: Trisa aur Gayatri ko

0: भले ही कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा हो, उनके इस एकमात्र पदक ने भारत के लिए एक कमाल का कीर्तिमान स्थापित किया है। 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। और कितने युवाओं को सपने देखने की वजह दी है, कितनों के दिलों में उम्मीद जगाई है, ये हौसला दिया है कि वो भी विश्व स्तरीय मंच पर कुछ कर सकते हैं, उसका कोई माप नहीं। शायद इसलिए इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
1: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just need to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjuna Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
0: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। लेकिन फाइनल से पहले जज्बातों में बह जाने और जश्न मनाने से एलेक्स ने साफ इनकार कर दिया।
2: I mean, I don't feel that emotional at the moment. I think I'm a little bit too tired, but I'm also proud of the way I managed that match. Also, mentally, I'm not really thinking how big it is. We haven't done the tournament yet, so definitely I'm still in the tournament and I don't want to think about any kind of historical aspect or anything.
0: उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है।
3: Of course, I'm really proud to have another world's medal. Not everyone can say that they have two, so I'm really proud. First of all, hopefully, we're inspiring some young kids from our countries.
0: Alex का सामना फाइनल में जापान के कोडाई नारोका के साथ होगा। महिलाओं के सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची और दक्षिण कोरिया से आने वाली मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग आमने सामने होंगी। पुरुषों के डबल्स में खिताबी भिड़ंत में होंगे मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मलेशिया के एरन चिया और सो वुई यिक। उनसे भिड़ेंगे भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ देने वाले चीन के लियांग और वांग। मिक्स डबल्स में फ्रांस के गिक्वेल और डेलरू की जोड़ी चीन की फेंग और हुआंग की जोड़ी से भिड़ेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट लिए मैं दर्पण टिकिया।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक। सुबह हो, दोपहर हो या दिन का कोई भी पहर, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बस यूं ही दिल को अच्छी लगती हैं। और जब इन बातों में शामिल हो थोड़ा संगीत, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी गपशप, तो बन जाता है आपका अपना नॉन स्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर। तो आज भी तैयार हो जाइए एक ऐसी ही प्यारी सी महफिल के लिए, जहां बातें होंगी आज के मौसम की, नजर डालेंगे आज के दिन के इतिहास पर और बताएंगे आपको रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े काम की एक चुटकी नुस्खे भी। और हाँ, इन सबके बीच होंगे आपके पसंदीदा गीत, कुछ दिलचस्प बातें, कुछ यादें और बहुत सारी ऐसी गपशप जो आपके साथ चलती ही रहेंगी। तो रेडियो की आवाज को जरा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका हमारा नॉन स्टॉप गपशप, गपशप ऐसी जो थमने का नाम न ले। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, मैं हूं देवजानी आप सभी सुनने वालों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सुहानी गपशप की एक प्यारे से गीत के साथ।

चलिए पता कर लेते हैं महानगर कोलकाता और आसपास के इलाकों के मौसम का हाल। कोलकाता में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान सुबह 6:30 बजे तक कोलकाता में लगभग 4.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और इस दौरान अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.6 डिग्री रहा। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 96% की और मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी तकरीबन 57% की। और अब मछुआरों के लिए एक विशेष चेतावनी। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में 23 यानी आज से 23 अगस्त से 24 अगस्त के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के आसपास तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और कभी कभी झोंकों के साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 23 अगस्त से 24 अगस्त के दौरान उत्तर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के समुद्र में न जाएं। ये था कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों के मौसम का हाल। मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए सुनते रहिए FM रेनबो।

0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर आज के दिन।
1: जी हाँ, आज के दिन यानी कि इतिहास के पन्नों में झांक कर देखने का दिन या झांक कर देखने का समय। सुन रहे हैं आप 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। कहा जाता है कि आज के ही दिन ईसा 79 में माउंट वेसुवियस रोमन अग्नि देवता वल्कन के पर्व के दिन हलचल मचाना शुरू करता है और पॉम्पेई शहर को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। 1839 में 23 अगस्त अंग्रेजों ने चीन से हांगकांग पर कब्जा कर लिया था। 1873 में लंदन में टेम्स नदी पर बने अल्बर्ट ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। आज के ही दिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। और आज के ही दिन 1924 में मंगल ग्रह 10वीं शताब्दी के बाद पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचा। अगस्त महात्मा गांधी को एक और भूख हड़ताल के बाद भारतीय जेल से रिहा कर दिया गया। 1966 में लूनर ऑर्बिटर 1 ने चंद्रमा से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली। 1990 पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने 3 अक्टूबर को पुनर्मिलन की घोषणा की। आज के ही दिन 2007 में हैशटैग का आविष्कार हुआ और इसका पहली बार उपयोग अमेरिकी उत्पाद डिजाइनर क्रिस मेसिना के एक ट्वीट में किया गया। 2017 में दुनिया के सबसे शुष्क स्थान चिली के एटाकामा रेगिस्तान में अप्रत्याशित बारिश के बाद फूल खिल उठे। सेशल्स के विशाल कछुए द्वारा पक्षी का शिकार करने और उसे खाने का वीडियो साक्ष्य पहली बार सामने आया। कछुओं को इससे पहले शाकाहारी माना जाता था और ये कारनामा आज के दिन हुआ। 2023 भारत का चंद्रयान 3 चंद्र मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन है और भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। आज है 23 अगस्त। अगर आज आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए पता करते हैं कि आप अपना जन्मदिन किन लोगों के साथ साझा करते हैं। आज अपना जन्मदिन मना रही हैं भारतीय अभिनेत्री सारा बानो, जिनका जन्म 1944 में हुआ था। आज ही के दिन कोलकाता में पैदा हुए थे भारतीय ताल वादक, तबला वादक और संगीतकार तन्मय बोस 1963 में। और आज के ही दिन 1968 में जन्म हुआ था गायक कलाकार के यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत का।
0: आज के दिन

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

0: चुटकी नुस्खे। और अब बारी हमारे छोटे से मगर बड़े काम के सेगमेंट एक चुटके नुस्खे की। आज का नुस्खा है, क्या है? जी हाँ, वही जिसे आपका और हमारा मन बहले, या यूं कहिए कि मन बहलता रहे, यानी कि हमारी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए तो हमारा मन भी बहलता रहेगा ना। जी हाँ, तो चलिए आज के नुस्खे के बारे में आपको बता दूं चटपट। सुबह उठकर एक गिलास सादा या गुनगुना पानी पीने से दिन की शुरुआत हाइड्रेशन के साथ होती है। नींबू निचोड़ने से पहले उसे हथेली से हल्का रोल कर ले, रस थोड़ा आसानी से निकलता है। नमकदानी में नमी न रहे इसके लिए उसमें चावल के कुछ दाने डाल सकते हैं। और सुबह की छोटी सी सावधानी, चाय या कॉफी पीने से पहले थोड़ा पानी पी लेना एक अच्छी आदत है। पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर सुबह या शाम होता है, जब तेज धूप ना हो। और जाते जाते एक और नुस्खा, अगर सुबह सुबह घर में रखी ब्रेड या बिस्कुट नरम पड़ गए हों तो उन्हें कुछ देर तक हल्की गर्म तवे पर रखकर सेक ले, या फिर एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर ले। नमी कम होगी और वे फिर से कुरकुरे हो जाएंगे। तो याद रखिए, छोटी सी तरकीब बड़ा काम। और ऐसे ही काम की बातों को लेकर हम हमेशा हाजिर हो जाते हैं एक चुटकी नुस्खे सेगमेंट में।
1: एक चुटकी नुस्खे।

0: कोलकाता कल्चर में बातें कोलकाता शहर के बारे में, यानी हमारे शहर में आसपास क्या हो रहा है। आज रविवार का दिन है, किन कार्यक्रमों में आप शामिल हो सकते हैं। सुकून टोर नाम से एक म्यूजिकल कंसर्ट है आज धनोधानो ऑडिटोरियम में। उत्कर्ष शर्मा जहां फीचर होंगे, और उसके बाद अनंतनाद बाई देवी चित्रलेखा जी, इसके साथ ही साथ अनुसृतो पुर खौरदा रविंद्र सदन में एक और कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ बहुत सारे नाटक है, प्लेज हैं जो आप आज देख सकते हैं। सितारे नाम से एक प्ले है, द लॉस्ट फाइल्स नाम से एक प्ले है, और इसके साथ ही साथ एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में नाथोबोती और नाथोबोत पुलिस, ये दो हैं। फिर शिशिर मंचो में देवी ओ दाग, कोनागोर में एक इवेंट है आखोरिक का आज शाम 6:15 से। शहर कोलकाता और उसके आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती रहती है जिनमें आप शामिल हो सकते हैं अपनी वीकेंड को थोड़ा और मजेदार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए।
1: कोलकाता कल्चर

0: की प्यास है।
1: बस देखते ही देखते आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। सुन रहे थे आप कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप दीप जानी के साथ ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। 10:56 और 8 सेकंड्स दोस्तों, इस बार इस कार्यक्रम से मैं इजाजत जरूर ले रही हूँ, पर दोबारा आप मुझसे मिल सकते हैं एफएम गोल्ड पर 11:10 से।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का,
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। स्वागत है आपका डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट में, जो हर दोपहर 3 बजे आप तक पहुंचता है। बॉलीवुड मैटिनी शो जो आपको जोड़ता है सिनेमा की चमकती दुनिया से, उनकी कहानियां, नई रिलीजेस, बहुत सी दिलचस्प बातों के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ 4 बजे तक इस एक्सक्लूसिव एंटरटेनमेंट चंक के साथ, जहां होंगी मनोरंजन की ढेर सारी खबरें और रंगारंग झलकियां। सबसे पहले आज है कृष्ण कुमार कुन्नत का जन्मदिन, ये तो हम सभी जान चुके हैं। तो आज का दिन डेडिकेटेड रहेगा उनके हिट सॉन्ग्स के प्रति, और हम शुरुआत करेंगे के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म तुम मिले से। सईद कादरी ने लिखा, प्रीतम ने इसे संगीत से सींचा, और आवाज हम सभी जानते हैं कृष्ण कुमार कुन्नत के। और कार्यक्रम है तीन का तड़का, आपके साथ हूं मैं संचिता।

3:09 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। एक है ऑरेंज अलर्ट आप सबके लिए और दोपहर 2:40 से अगले 2-3 घंटों के दौरान उत्तरी दिनाजपुर जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की बहुत संभावना जताई गई है। तो उत्तर दिनाजपुर के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल एहतियात बरते और घरों में रहें, और अगर बाहर निकलना है तो बिल्कुल इस सावधानी के साथ निकलें कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। कार्यक्रम है तीन का तड़का। इमरान हाशमी के करियर में आवारापन 2 ने मानो नई जान फूंक दी हो। जी हाँ, 19 अगस्त तक फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था और 21 अगस्त तक इसकी दुनिया भर की कमाई 161 करोड़ रुपए के अधिक पहुंच गई है, ऐसा बताया गया है। खास बात यह है कि रिलीज के 7वें दिन फिल्म को शुरुआती दिन से भी ज्यादा शो मिले। इमरान के प्रशंसकों के लिए ये सचमुच कमबैक से कहीं बढ़कर शानदार सिनेमाई वापसी बन गई है। वहीं बंटवारा 1947 पर भारी पड़ा आवारापन 2। एक ही समय पर रिलीज हुई आवारापन 2 और सनी देओल अभिनित बंटवारा 1947 के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला भी चर्चे में रहा। जहां इमरान हाशमी की फिल्म लगातार दर्शक जुटाने में सफल रही, वहीं बंटवारा 1947 की कमाई अपेक्षाकृत धीमी रही। 21 अगस्त तक आवारापन 2 की विश्वव्यापी कमाई तो बहुत करोड़ों में है और उससे भी अधिक बताई जा रही है, जबकि बंटवारा 1947 लगभग 47.62 करोड़ रुपए पर ही थमी हुई है। यानी इस बार बॉक्स ऑफिस का सिक्का इमरान के नाम रहा। IFFM 2026 में रेखा को मिला विशेष सम्मान। मेलबोर्न में आयोजित 17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न ने भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रेखा को एक्सलेंस इन सिनेमा सम्मान देकर उनकी शानदार

नमाई यात्रा को सलाम किया। इसी समारोह में कांतारा के लिए ऋषभ सेठी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। भारतीय सिनेमा की विभिन्न भाषाओं और पीढ़ियों को एक मंच पर सम्मानित करने वाला ये समारोह 2026 में भी भारतीय सिनेमा की वैश्विक लोकप्रियता का खूबसूरत उदाहरण देखने को मिला। 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है तीन का तड़का और हम आगे बढ़ेंगे एक और के द्वारा गाए हुए गीत के साथ। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, जावेद अख्तर के बोल को संगीत से सींचा शंकर ईशान लॉय ने। 3:12 आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

जाने ये क्या हुआ और क्या। वाकई इस न्यूज चंक को सुनकर और आपको बताते हुए ऐसा ही लग रहा है बॉलीवुड के चर्चित दंपति गोविंदा और सुनीता आहूजा का वैवाहिक विवाद इस सप्ताह फिर मनोरंजन जगत की बड़ी खबर बनी। सुनीता ने पहले दायर की गई तलाक याचिका वापस ले ली है। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री और सोशल मीडिया हस्ती राखी सावंत से बातचीत में इसके पीछे अपने दावे बताए। इस पूरे घटनाक्रम पर गोविंदा के मैनेजर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। यानी बॉलीवुड की ये पुरानी प्रेम कहानी इस सप्ताह फिर से खबरों में बनी हुई है। गोविंदा के बेटे वहां यशवर्धन आहूजा अब पिता की तरह रूप हले पर्दे पर जो है सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो गए। 21 अगस्त को घोषणा हुई है कि फिल्म हीरो की हीरोइनी, जी हाँ हीरो की हीरोइनी के अभिनय की शुरुआत करेंगे वो। और फिल्म का निर्माण एकता आर कपूर से जुड़ा है और निर्देशक साजिद खान लंबे अंतराल के बाद जो है निर्देशन की दुनिया में लौट आए हैं। यानी आने वाले समय में बॉलीवुड को एक और स्टार किड की पहली फिल्म देखने को मिलेगी। अब देखना यह है कि यशवर्धन दर्शकों का दिल कितना ज्यादा जीत पाते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज डेट हुई है पक्की। इस बार भक्ति और एनिमेशन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा दर्शकों को। 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर दर्शक जो है फिल्म भगवान जगन्नाथ की दिव्य दुनिया और उनकी महिमा को एनिमेशन के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। 21 अगस्त को निर्माताओं ने इसकी रिलीज को लेकर पुष्टि की है। बच्चों से लेकर परिवार के सभी सदस्य यानी दर्शक इसके लिए बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं और सिनेमाई अनुभव पेश करने को तैयार है ये फिल्म। आगे बढ़ेंगे केके की एक और ट्रैक के साथ। फिल्म का नाम है 10। पंछी जलौनवी ने लिखा और केके और शान ने इस गीत को गाया। कार्यक्रम है 3 का तड़का। 3:18 आप जुड़े हुए संचिता के साथ।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर,
1: 107 FM रेनबो पर तीन का तड़का। और चलिए आगे लगाते हैं तड़का। 3:22:34 आपके साथ हूं मैं संचिता। कियारा आडवाणी की आगामी फिल्म टॉक्सिक को लेकर उत्सुक जो है उत्सुकता बढ़ती जा रही है और 21 अगस्त को अभिनेत्री ने फिल्म के रचनात्मक संसार के बारे में बात करते हुए इसे महज एक परिकथा नहीं माना। उनके अनुसार फिल्म के पीछे अलग अलग प्रतिभाओं और रचनात्मक दृष्टियों का ऐसा मेल हुआ है जिसे निर्देशक ने पिक्यूलियर एक एल्केमी कहा है। यश अभिनीत इस फिल्म को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा है और अब कियारा की टिप्पणी ने दर्शकों की जिज्ञासा जो है और भी बढ़ा दी है। सेकेंड गेम्स और गली बॉय जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली कुबरा सैथ और फर्जी के दूसरे सीजन का सेट पर वापस आ गई है। कुबरा सैथ 21 अगस्त को इसकी जानकारी सामने आई है। राज और डीके की लोकप्रिय क्राइम थ्रिलर सीरीज का पहला सीजन दर्शकों के बीच खूब चर्चित रहा है। कुबरा की वापसी से नए सीजन को लेकर उत्साह और बढ़ गया है और अब दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि दूसरे सीजन में कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचती है। 21 अगस्त को कौन बनेगा करोड़पति, जी हाँ, के सेट पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान की एक मजेदार झलक सामने आई। दोनों सितारों ने कैमरे के सामने हल्के फुल्के अंदाज में समय बिताया। अक्षय और सैफ की ऑन स्क्रीन तथा ऑफ स्क्रीन दोस्ताना केमिस्ट्री दर्शकों के लिए हमेशा आकर्षण का विषय रहा और KBC के मंच पर इन दोनों की मौजूदगी ने मनोरंजन का तड़का और बढ़ा दिया है। यानी अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय मंच पर

इस बार सितारों की मस्ती भी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और धड़कते हुए गीत के साथ, के डोमिनिक और साथियों की आवाज, साथ में कविता कृष्णमूर्ति। हम दिल दे चुके सनम से इस ट्रैक को आप सुनेंगे, जिसे लिखा महबूब ने और इसे संगीत से सजाया इस्माइल दरबार ने। कार्यक्रम है 3 का तड़का, 3:24 107 FM रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर।

0: सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: सरकारी उद्यम और तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पीएम गतिशक्ति के बारे में। भारत के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाया है पीएम गतिशक्ति। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम गतिशक्ति पहल की घोषणा की थी साल 2021 में। बहुत मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है पीएम गतिशक्ति, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रेल और सड़क मार्ग सहित विभिन्न मंत्रालयों की एक साथ लाने के लिए इसे बनाया गया है, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की जो आवाजाही है उसके लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार हो और यात्रा का जो समय है वो कम हो। प्रधानमंत्री गतिशक्ति में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल है, जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि बंदरगाह और उड़ान। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी में 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्यों केंद्रित शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है और कुल 1614 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों में त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। आठ अवसंरचना मंत्रालयों और 15 सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के लिए एसओपी अधिसूचित किया जा चुका है, जबकि अन्य मंत्रालय और राज्य केंद्रित शासित प्रदेशों के लिए विकास कार्य जारी है। डीपीआईआईटी द्वारा तैयार किए गए डेटा प्रबंधन पर प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर संकलन में हितधारकों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा भी दी गई है। पीएम गतिशक्ति के सफल पहलुओं को उजागर करने वाला संकलन खंड एक और खंड दो प्रकाशित किया गया है और सिद्धांतों का पालन करते हुए विभिन्न मंत्रालयों की 15.39 लाख करोड़ रुपए की 208 बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय के 3 आर्थिक गलियारे, जैसे कि ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, उच्च यातायात घनत्व गलियारे और रेल सागर के अंतर्गत आने वाली 434 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और उन्हें पीएमओ के साथ साझा किया गया है।

जनमान पोर्टल का उपयोग करते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान की गई है। ये उपलब्धियां विभिन्न मंत्रालय और क्षेत्रों में योजना दक्षता और सहयोग में सुधार लाने में एनएमपी की व्यापक उपयोगिता को उजागर करती है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल भारत में अवसंरचना विकास के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। उद्देश्य यही है कि एक सुगम और कुशल बहुआयामी परिवहन नेटवर्क का निर्माण किया जाए, विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों की एकीकृत करके और उन्नत प्रति प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर। ये पहल जो है पूरे देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और रसद लागत को कम करने का प्रयास करती है। गतिशक्ति संचार पोर्टल मार्ग अधिकार अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके दूर

0: संचार अवसंरचना के विस्तार में तेजी लाकर और देश भर में 5G सेवाओं की व्यर्थ तैयारियां या तैनाती को सुगम बनाकर इस दृष्टिकोण को और भी मजबूत बनाता है। इन संयुक्त प्रयासों से भारत आत्मनिर्भरता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में है और भारत के जो समन्वित अवसंरचना नियोजन के लिए प्रमुख डिजिटल ढांचे के रूप में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2026 में यानी 2026 में भी अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है। ये 3,200 से अधिक GIS डेटा लेयर्स का उपयोग करके 98 मंत्रालयों के बीच विभागीय बाधाओं को दूर करता है, जिससे रसद लागत की जो GDP के 9-10% तक कम करने, बहुस्तरीय रेल और सड़क परियोजनाओं को गति देने और राज्य स्तरीय पूंजी निवेशों को निर्देशित करने में मदद कर रही है। प्रमुख परिचालन प्रभाव लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आई है। रेलवे सड़क मार्ग और शॉपिंग के जो माध्यम से हम सुव्यवस्थित बहुत तरीका मार्ग निर्धारण में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक खर्चों को वैश्विक मानकों तक पहुंचाया गया है। पीएम गतिशक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत परियोजनाओं का तेजी से संरेक्षण किया जा रहा है और अंतिम रूप देने का समय 3-4 महीने से घटकर लगभग 1 महीने रह गया है। डेटा आधारित अनुमोदन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप ने सैकड़ों उच्च मूल्य वाली केंद्रीय परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है, जिससे ओवरलैप और पर्यावरणीय जो व्यवधानों को कम किया जा सकेगा, राज्य और निजी एकाकरण किया जा सकेगा। सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो सकेंगे। आज हम बात कर रहे थे पीएम गतिशक्ति के बारे में परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर।

फिल्म 83 से इस गीत को आप सुन रहे हैं केके की आवाज में 107 एफएम रेनबो पर, कार्यक्रम तीन का तड़का। 3:44 आप जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ तड़का के साथ। अभिनेता अक्षय ओबेरॉय अपनी आगामी फिल्म लव लॉटरी में पुरुषों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने लाने वाले हैं जिन पर आम तौर पर खुलकर चर्चा कम होती है। 18 अगस्त को इन्होंने फिल्म के विषय में या फिल्म के बारे में बात की। अभिनेता के अनुसार कहानी कुछ ऐसे अनुभवों को छूती है जिन्हें पुरुष समाज के सामने व्यक्त करने में झिझक महसूस कर सकते हैं। मनोरंजन के साथ सामाजिक मुद्दे को जोड़ने वाली ये फिल्म इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि ये रिश्तों और पुरुषों की भावनात्मक दुनिया को अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है। रेनबो पर कार्यक्रम तीन का तड़का। गुलजार को जन्मदिन पर सुभाष घाई की खास श्रद्धांजलि। 18 अगस्त को महान गीतकार, लेखक और निर्देशक गुलजार का जन्मदिन बॉलीवुड में विशेष अंदाज में मनाया गया। फिल्मकार सुभाष घाई ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अनमोल रत्न बताते हुए उनकी साहित्यिक और सिनेमाई प्रतिभा को याद किया। गुलजार ने दशकों तक गीत, कविता, पटकथा और निर्देशन के माध्यम से हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया ही है और इनकी कलम ने प्रेम से लेकर जीवन दर्शन तक को बेहद संवेदनशील शब्द दिए हैं। बॉलीवुड के लिए उनका जन्मदिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि रचनात्मकता का एक उत्सव बन गया। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ और इस बार वही केके की ही आवाज में है लेकिन फिल्म का नाम लाइफ इन अ मेट्रो। सईद कादरी, संदीप श्रीवास्तव और अमिताभ वर्मा ने गीत के बोल लिखे और प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया। कार्यक्रम तीन का तड़का संचिता के साथ। 3:46

लाइफ इन अ मेट्रो से इस गीत को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे एक और चंग के साथ। 18 अगस्त को आमिर खान ने अपनी संघर्ष और शुरुआती फिल्म दिनों से जुड़ी एक दिलचस्प याद साझा की। उन्होंने बताया कि 1984-85 के दौर में वो सनी देओल अभिनित मंजिल मंजिल और जबरदस्त जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। आज के सुपरस्टार आमिर का ये पुराना अध्याय बताता है कि कैमरे के सामने आने से पहले उन्होंने कैमरे के पीछे की दुनिया को भी करीब से साझा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, समझा ही नहीं था, बल्कि बॉलीवुड में सीखने का ये जो सफर है वो काफी इंस्पायरिंग रहा उनके लिए। अभिनेता सत्यजीत पुरी ने 18 अगस्त को देवानंद के साथ काम करने के दिनों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक स्मृति साझा की।

या वे देव आनंद की 1971 की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे और उन्होंने याद किया कि देव आनंद लोगों के चरित्र को समझने के लिए उनके जूतों तक पर ध्यान देते थे। ऐसी छोटी सी यादें हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के कलाकारों के नाम करने के अंदाज की एक बहुत ही अनमोल झलक देती है। 20 अगस्त को अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। उनकी पत्नी लिन लैशरम ने सोशल मीडिया पर प्यार भरी शुभकामनाएं देते हुए न्योमिका के पापा कहकर संबोधित किया और उनके लिए हमेशा बड़े रहने वाले आइसक्रीम बाउल की मजेदार शुभकामना की। अभिनय में गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले रणदीप के जन्मदिन पर पारिवारिक हल्का फुल्का अंदाज प्रशंसकों को खूब पसंद आया। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई के बीच अक्षय कुमार से भी एक कार्यक्रम में केसर को लेकर सवाल पूछा गया। 21 अगस्त को एक कार्यक्रम में पत्रकार के सवाल पर अक्षय ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने स्थिति को गंभीर बहस में बदलने के बजाय हल्के अंदाज में संभाला। बॉलीवुड में विज्ञापन सितारों की जिम्मेदारी और ब्रांड एंडोर्समेंट पर चल रही है चर्चा के बीच अक्षय की ये प्रतिक्रिया खूब सुर्खियां बटोर रही है। आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ और इस बार बचना है हसीनों के और शिल्पा राव की है आवाज। अन्विता दत्त गुप्तन ने लिखा इस गीत को और विशाल शेखर ने इसे संगीतबद्ध किया। 107 एफएम रेनबो पर कार्यक्रम 3 का दरका, आप जुड़े हुए इस कार्यक्रम में संचिता के साथ।

और इस गीत के बाद यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम तीन का तड़का। आप जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में संचिता के साथ। ऐसे ही मजेदार चंग्स और ऐसे ही मजेदार खबरों के साथ हम आते हैं तीन का तड़का हर दोपहर 3 बजे। आखिरी गीत इस कार्यक्रम का केके की ही आवाज में, फिल्म का नाम छिछोड़े। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा इस गीत को और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया। इसी को सुनते हुए इजाजत चाहूंगी, लेकिन आपसे मिलूंगी 5:15 पर FM गोल्ड पर लेकर चाय और क्लासिक्स। तब तक इंतजार करें और सुनते रहिए।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: এখন রেসপন্সিবিলিটি দুটো হয়ে গেছে, আসলে বাজার যাওয়াটা তো বন্ধ হয়ে গেছে, সেই কারণের জন্য

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम है छायालोक। और छायालोक शुरू करने से पहले, सबसे पहले आज रविवार है, हम वापस जाएंगे यादों के उस दुनिया को याद करने या उसे वापस अपने जीवन में लाने, उन्हीं गीतों को गुनगुनाने जिन्हें हम कभी गुनगुनाया करते थे। लेकिन उससे पहले आबोहवा दफ्तर की ओर से एक चेतावनी, शाम 7:18 से अगले 2-3 घंटे के दौरान हावड़ा, बीरभूम, पूर्वी वर्धमान, कोलकाता और पुरुलिया जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना जताई गई है। जो लोग इन जिलों में रहते हैं, हावड़ा, बीरभूम, पूर्व वर्धमान और कोलकाता और पुरुलिया के लोग, इस दौरान जब हवा चल रही हो तो एहतियात बरते और सुरक्षित रहे।
0: यादों की बारात।

यादों की बारात। कभी कभी हवा में कोई धुन तैरती है और दिल जो है कह उठता है, ये गाना तो कभी हमने एक जमाने में सुना है। बिल्कुल वही लम्हे, वही पर्दे पर झिलमिलाती कहानियां, वही परफ्यूम सी महक जो वक्त के पन्नों में आज भी बसती है। तो तैयार हो जाएं, रेडियो पर 107 FM

रेनबो पर आप सुनेंगे या फिर चलेंगे उस संगीत में सफर की ओर जो हमें ले चलेगा सालों पीछे। और शुरुआत करेंगे उस फिल्म के गीत के साथ जिसने 30 साल पूरे कर लिए। जी हाँ, आज 23 अगस्त है, आज ही के दिन 1996 को रिलीज हुई थी ये फिल्म। वो कौन से

विनोद राठौर की आवाज में समीर ने लिखा इस गीत को और नदीम श्रवण ने इसे संगीत बद्ध किया। फिल्म का नाम हो सकता है कि आप गाना सुनने के बाद समझ जाए। सात बजकर 35 मिनट 31 सेकंड कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ।

यारा यो यारा मिलना अकेला जाने क्या रंग लाएगा। फिल्म का नाम 1996 की फिल्म जीत, फिर से जिए वही पल। 1996 की जीत ने सनी देओल और सलमान खान को पहली बार एक ही फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं के साथ लाया गया। राज कंवर ने निर्देशन किया, साजिद नाडियाडवाला ने निर्माण किया और इस फिल्म में करिश्मा कपूर और तब्बू की महत्वपूर्ण भूमिकाएं वाकई वह तारीफ करने लायक थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय सनी देओल एक स्थापित एक्शन स्टार थे, जबकि सलमान अपने करियर में उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे थे। बाद में सलमान ने माना कि जीत में सनी के साथ काम करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। काजल के किरदार के लिए करिश्मा कपूर का नाम आज स्वाभाविक लगता है, लेकिन उपलब्ध फिल्म संबंधी स्रोतों के अनुसार शुरुआत में इस भूमिका के लिए जूही चावला को साइन किया गया। तारीखों से जुड़ी समस्याओं के कारण जूही बाद में फिल्म से अलग हो गई और करिश्मा कपूर इस भूमिका में आ गई। करिश्मा ने काजल के किरदार में रोमांस, भावनात्मक संघर्ष दोनों को निभाया। यही कास्टिंग बदलाव फिल्म के अंतिम कलाकार संतुलन को आकार देने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में जानी जाती है। फिल्म को अक्सर सनी देओल की एक्शन फिल्मों की सूची में याद किया जाता है, लेकिन इसकी कहानी में रोमांस, अपराध और भावनात्मक त्याग तीनों प्रमुख तत्व हैं। सनी देओल ने करण नाम के इस व्यक्ति का रोल किया, भूमिका निभाई, जो अपराध की दुनिया से जुड़ा है, जबकि सलमान ने राजनाथ यानी राजू सहाय का किरदार निभाया। काजल के साथ करण का प्रेम और बाद में उसका राजू के साथ विवाह कहानी को एक अलग भावनात्मक दिशा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीत के कहानी के साथ और जीत के गीतों के साथ। कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाज, समीर के बोल को नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया। वन ओ सेवन एफ एम रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात संचिता के साथ।

107 FM रेनबो पर कार्यक्रम यादों की बारात। बिल्कुल ऐसे ही गीतों के वजह से जीत के जो गीत हैं 1990s के दशक के संगीत प्रेमियों के बीच खास जगह बनाई। फिल्म का गीत संगीत नदीम श्रवण ने तैयार किया और गीतकार समीर ने इसके बोल लिखे। यारा हो या तू धरती पे चाहे जहां भी, सांसों का चलना अब सांस लेने की फुर्सत नहीं जैसे गीत अलग अलग भावनाओं को सामने लाते हैं। साउंडट्रैक में सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार शानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जैसे लोकप्रिय गायकों की आवाज सुनाई देती है। सनी देओल की पहचान मुख्यतः दमदार संवाद और एक्शन से जुड़ी रही, लेकिन जीत के वो गीत यारा ओ यारा गीत ने उनका अलग रूप देखने को मिलता है। गीत में उनका नृत्य प्रदर्शन बाद में दर्शकों के बीच खूब चर्चा का विषय बना और उनके कुछ डांस मुखिल जो है मूव्स, खासकर पैर पटक पटक

0: ये नाचना लोकप्रिय संस्कृति में मजाक और पैरडी का हिस्सा भी बना एक समय पर। गीतों को विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के आवाज दी और जीत ने सनी देओल की स्क्रीन इमेज को एक हल्का फुल्का सा पहलू भी बिल्कुल दर्शकों के सामने रखा।
1: जादू की बारात।
0: आगे बढ़ेंगे एक और गीत के साथ। जीत है फिल्म का नाम, जैसा कि आप जानते हैं 30 साल पूरे कर लिए इसने इंडस्ट्री में उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में। अगला गीत है इसी फिल्म से, कार्यक्रम है यादों की बारात। आपके साथ हूं मैं संचिता और आपका और मेरा साथ जो है इस कार्यक्रम में 8 बजे तक का है।

हम सुन रहे हैं गीत फिल्म से इन गीतों को। गीत की रिलीज तारीख 23 अगस्त 1996 थी और इसका निर्देशन राज कंवर ने किया था। फिल्म की अवधि तकरीबन 164 मिनट की थी, यानी करीब 2 घंटे 44 मिनट। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने भारत में लगभग करोड़ों की 16 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी और सुपरहिट रही। जीत का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया था और ये उनकी प्रोडक्शन कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स के शुरुआत के मुहूर्त के एक फिल्म थी। खास बात यह है कि सलमान और साजिद नाडियाडवाला की पहली फिल्म यही जीत जो है साझेदारी में इन्होंने बनाई थी। आगे चलकर दोनों की जोड़ी ने कई सफल फिल्मों में साथ काम किया। इस लिहाज से जीत केवल कलाकारों के करियर में ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण निर्माता स्टार साझेदारी की शुरुआत के रूप में भी हम इसे याद कर सकते हैं। विक्ट्री, जीत यानी विक्ट्री शब्द का अर्थ है जीत और फिल्म का शीर्षक इसी भावनात्मक यात्रा से दिलचस्प तरीके से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से मैंने कहा कि गीत काफी प्रसिद्ध हुए थे, तो इसी फिल्म का एक आखिरी गीत जिसके बाद आप जुड़ेंगे छायालोक कार्यक्रम के दूसरे पायदान के साथ, अंकित होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत दी संचिता को और सुनते रहिए ये गीत।

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है दोस्तों 107 एफएम रेनबो पर। आज अंकित आपके साथ और वक्त हो चुके हैं 8:02 स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों, और मैं रहने वाला हूं आप लोगों के साथ इस कार्यक्रम में 9 बजे तक, यानी यादों की बारात में। दोस्तों रविवार की शाम है और बाहर अगर हल्की हल्की बारिश की फुहार हो, हाथ में चाय हो और रेडियो पर बज रहा हो कोई अपना सा गीत, तो फिर यादों को लौटने से कौन रोक सकता है। और इसी बहाने आज फिर सज गई है हमारी अपनी महफिल यादों की बारात। दोस्तों आज की शाम हम किसी एक दशक की बात नहीं करेंगे, आज हम कैलेंडर के एक खास हिस्से को पकड़ेंगे। 21 अगस्त से 24 अगस्त के आसपास अलग अलग वर्षों में रिलीज हुई फिल्मों को याद करेंगे। कुछ फिल्में बड़ी हिट रही, कुछ को दर्शक ने धीरे धीरे अपनाया, लेकिन हर फिल्म अपने साथ एक गीत छोड़ गई। तो चलिए दोस्तों आज की फिल्मी यादों का सफर शुरू करते हैं साल 2015 से एक ऐसी फिल्म के साथ जिसमें परिवार है, रिश्ते हैं, सफर है और जिंदगी को फिर से जोड़ने की कोशिश है। 21 अगस्त 2015 को रिलीज हुई थी ऑल इज वेल। अभिषेक बच्चन, असीन, ऋषि कपूर और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकारों से सजी ये कहानी एक ऐसे परिवार की थी जिसमें रिश्तों को बीच दूरी आ चुकी थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी में एक सफर, कुछ मुलाकातें और कुछ अनकही बातें रिश्तों को फिर से करीब ले आती है। और इस फिल्म का संगीत भी अपने साथ कुछ खूबसूरत एहसास लेकर आया। अरिजीत सिंह की आवाज में सुनी ऑल इज वेल का ये गीत। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई फिल्मों की जानकारी है जो इस सप्ताह या इस वीकेंड रिलीज हुई थी पिछले कुछ वर्षों में, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341 नंबर, एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए 2213-1341।

फिल्म ऑल इज वेल से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये ट्रैक हिमेश रेशमिया का कंपोजिशन लिरिसिस्ट शब्बीर अहमद के थे। दोस्तों बॉलीवुड सिर्फ गंभीर कहानियों का नाम नहीं है, ये प्यार मुस्कान और जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पलों का नाम भी है। चलते हैं साल 2012 में 24 अगस्त एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसमें दो ऐसे लोग मिले जिन्हें शायद प्यार

की तलाश तो थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्यार इतनी देर से आएगा। फिल्म थी शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी। फराह खान और बोमन ईरानी की यह फिल्म एक अलग तरह की प्रेम कहानी लेकर आई, क्योंकि प्यार को कोई उम्र नहीं होती और दिल को कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए इस फिल्म से ये गीत।

फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी से दोस्तों, आप सुन रहे थे केके और श्रेया घोषाल की आवाज में। यह ट्रैक जीत गांगुली का कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य की।

0: बोल।
1: कितना खूबसूरत है ना दोस्तों, जब कोई गीत हमें ये याद दिलाए कि प्यार के लिए कोई सही उम्र नहीं होती, बस दिल होना चाहिए और सामने कोई ऐसा इंसान जिसके साथ जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगे। अब चलते हैं साल 2016 की तरफ। एक लड़की, एक सफर और ऐसी स्थिति जिसमें प्यार सीमाओं को भी पार कर जाता है। फिल्म थी हैप्पी भाग जाएगी। डायना पेंटी, अभय देवल और जिमी शेरगिल की इस फिल्म ने कॉमेडी और रोमांस को एक साथ जोड़ा, लेकिन इसका ये गीत अपने आप में एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। सुहेल सेन और अल्तमाश फरीदी की आवाज में सुनिए अगला ट्रैक।

फिल्म हैप्पी भाग जाएगी से दोस्तों आप सुन रहे थे अल्तमाश फरीदी की आवाज में ये ट्रैक सुहेल सेन का कंपोजिशन लिरिसिस्ट मुद्दशर अजीज के। दोस्तों 8:20 PM हो चुका है, जिसने अभी अभी रेडियो ऑन किया उन्हें बता दूंगी दोस्तों आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है यादों की बारात आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। और यादों की बारात में दोस्तों आप जानते ही क्या होता है, लेकिन जो नए दोस्त जुड़ते हैं उनको बता दूं कि यादों की बारात में मैं कुछ ऐसे फिल्मों की बात करता हूं जो इस वीकेंड में यानी इस सप्ताहांत में रिलीज हुई थी, चाहे पिछले कुछ वर्षों में किसी भी वर्ष में रिलीज हुई उस फिल्मों के बारे में करता हूं बात। और आपसे भी जानना चाहता हूं कि अगर आपको भी ऐसी कोई फिल्मों के बारे में पता है, याद है, जानकारी है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2213-1341। दोस्तों कुछ प्रेम कहानियां बहुत सीधी होती है और कुछ में रास्ते ही इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं कि कहानी सुनकर हंसी भी आती है और प्यार भी। लेकिन अब हम चलते हैं एक ऐसे फिल्म की ओर जिसमें तीन किरदार हैं, प्यार है, गलत फहमियां हैं और एक ऐसा शहर जहां सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बहुत कम है। साल 2017, फिल्म बरेली की बर्फी। आयुष्मान खुराना, कृति सेनन और राजकुमार राव, तीनों की शानदार केमिस्ट्री ने इस फिल्म को यादगार बनाया। और इस फिल्म का ये गीत प्यार को बहुत सादगी से बयान करता है। औरकों की आवाज में सुनिए अगला ट्रैक।

0: फिल्म बरेली की बर्फी से दोस्तों और को प्रभो मुखर्जी लेकर आए थे ये ट्रैक, और को प्रभो मुखर्जी का संगीत, लिरिसिस्ट भी थे और को प्रभो मुखर्जी की, और हमारे साथ एक दोस्त आ चुके हैं फोन लाइन पे, करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी। मैं
0: नमस्ते
1: पुलिस से अशोक दत्त बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी अशोक जी, वेलकम टू माय शो। बताइए आपको ऐसी कोई फिल्म के बारे में पता है जो रिलीज हुई थी इस महीने?
1: मैंने एक फिल्म देखे थे, फिल्म का नाम है डर।
0: अच्छा।
1: जूही चावला था और शाहरुख खान था। इसमें प्रेम का कहानी जो बहुत अच्छा मेरे को लगा है।
0: अच्छा।
1: जो हीरोइन एक से तो प्यार करती है, उसको देख के और एक वो पगल हो जाता है।
0: हाँ।
1: ये फिल्म बहुत अच्छा है, इसका गाना कोई हो तो बजा दीजिए।
0: जरूर जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा अशोक जी आपके लिए इस गाने को बजाने के लिए। और आपने भी एक फिल्म के बारे में बात की जो मुझे भी तो मजा आया सुन के आपसे। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई फिल्मों की जानकारी है जो इस महीने यानी इस सप्ताह 23, 24, 25 अगस्त में, चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी भी साल में रिलीज हुई थी, अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी तो आप इसे हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 2213-1341। दोस्तों प्यार की बात हो और नजम नजम जैसे गीत बज जाए तो शाम अपने आप थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अब हम वापस चलेंगे 2013 में, एक ऐसा साल जिसमें अगस्त के महीने में दो बड़ी फिल्में सामने आई। एक तरफ थे शाहरुख खान, दूसरी तरफ थे अक्षय कुमार। लेकिन आज हम याद करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म को, नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। अक्षय कुमार, इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा, और कहानी थी मुंबई के उस दौर की जहां दोस्ती, मोहब्बत और अपराध सब एक रास्ते पर चलते थे। लेकिन फिल्म के संगीत में एक गीत ऐसा था जिसने अपनी अलग पहचान बनाई, जावेद बशीर की आवाज में प्रीतम का संगीत। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा से जावेद बशीर की आवाज में आप सुन रहे थे। ये गीत संगीत से सजाया था प्रीतम ने, बोल से सवाला था रजत अरोड़ा ने, और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, कर लेते हैं उनसे भी बात। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग, मेरा नाम है शुभजीत, बिलगुड़िया से बात कर रहा हूँ।
0: शुभजीत, वेलकम टू माई शो एंड गुड इवनिंग। बताओ, तुमको कौन सी ऐसी फिल्में याद है जो शेयर करना चाहते हो हमसे?
1: दो फिल्म के बारे में बताऊंगा, एक तो शोले जो बहुत सुपरहिट हुआ
0: सुपर डुपर हिट
1: आज तक, और एक फिल्म जो बिल्कुल हटके था, क्योंकि 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुआ था उस समय हम लोग की जो एक्सपोजर थी वो इतना थी नहीं जो स्टोरी में दिखाया गया था, वो है दिल चाहता है।
0: वाह।
1: तो शोले में जो मुझे सबसे बड़ी बात लगा कि एक टाइम था ना जहां पर लोग डरते थे डाकुओं से, मतलब चंबल एक ऐसा जगह था जहां सोचते थे बाप रे बाप, कितने शूटिंग तो अभी होता है काफी चंबल में। तो ये जो इस फिल्म का जो ब्लेंडिंग था कि उसका जो पटकथा था उसमें जो रोमांस दोस्ती, उसमें कॉमेडी और उसके साथ साथ जो हिंसा दिखाया गया था, तो उसमें और गब्बर सिंह का जो रोल था जो आज तक सबको याद है,
0: बहुत है।
1: उसका जो कॉम्बिनेशन इतना अच्छी तरह से उसका स्क्रीन पे लिखा गया था और काफी बड़ा फिल्म था, काफी रन टाइम उसका काफी था, तो ये यादगार रह गया
0: बिल्कुल।
1: और दिल चाहता है में जो मुझे अच्छा लगा कि उस दौर में अभी के जैसे माहौल है, हम लोग काफी एक्सपोज हो चुके हैं कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग, तो वहां पर जो तीन दोस्त थे आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना, उन लोगों का जो अलग अलग स्टोरीज थी, स्पेशली मुझे

0: सबसे अच्छा लगा तो उसका सॉफ्ट लव स्टोरी बिटवीन डिम्पल कपाड़िया और अक्षय खन्ना का, जो अभी के उस समय के लोग सोचते होंगे कि अरे बाप रे ऐसा कैसा, मतलब एकदम अनइक्वल लव स्टोरी जहां पर वो ऑलरेडी काफी एजेड थी। तो ये जो था ये ऑडियंस को प्रिपेयर कर देता है फॉर द फ्यूचर।
1: जी सही बोल,
0: ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। उसका गाना तो मस्त था,
1: बहुत तो सही है,
0: बहुत अच्छा।

बहुत कम होता है और एहसास बहुत ज्यादा। अब उसी दौर की एक और फिल्मी याद, साल 2013 ही, और एक ऐसी फिल्म जिसने दोस्ती, प्यार और सफर को दक्षिण भारत की खूबसूरत पृष्ठभूमि में दिखाया, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। रोहित शेट्टी की फिल्म, शाहरुख खान का राहुल, दीपिका पादुकोण की मीना और इनके बीच पनपता एक खूबसूरत रिश्ता। और फिर आता है ये गीत, जैसे बारिश में कोई रंगीन तितली। सुनिए चेन्नई एक्सप्रेस का यह अगला ट्रैक।

0: फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से दोस्तों आप सुन रहे थे चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाज में। ये ट्रैक विशाल शेखर का कंपोजिशन अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। 8:41 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ कार्यक्रम चल रहा है यादों की बारात। और यादों की बारात में दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फिल्मों के बारे में जो इस सप्ताह पिछले कुछ वर्षों में पिछले कुछ सालों में रिलीज हुई थी, उन्हीं फिल्मों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ उन फिल्मों के गीत। और आपके जहन में भी ऐसी कोई फिल्म है जो आप जिसे आप याद कर सकते हैं या आपको याद है कि पिछले कुछ वर्षों में इस महीने या इस सप्ताह रिलीज हुई थी कोई फिल्म है, तो आइए हमसे शेयर करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 2213-1341 और हमारे साथ एक दोस्त जुड़ चुके हैं लाइन पे, अर्थन से बात। हेलो हेलो
1: नमस्ते,
0: कौन बोल रहे हैं आज हमारे साथ फोन लाइन पे?
1: मैं कुतुबुद्दीन मुल्ला बात कर रहा हूँ, सुंदरबन सिल्फी शामनगर गांव से।
0: हाँ कुतुबुद्दीन जी बोलिए, कौन सी फिल्म आप चर्चा करना चाहेंगे आज?
1: हमें एक तो सिनेमार कथा बोलबो, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर और रानी
0: मुखर्जी। बोलून
1: अमर दूटी একদম ভালোই লাগে, হিরোইন আমার প্রিয় হিরোইন এবং হিরো শাহরুখ খান।
0: আচ্ছা,
1: ওই সিনেমার মধ্যে আমার সবথেকে বেটার এবং সৌন্দর্য এবং ভালোই লাগে দিল তো পাগলের টাইটেল সংটি।
0: আচ্ছা,
1: তাদের যে অভিনয়, তাদের যে নাচের ভঙ্গি খুবই ভালো লাগে, সেই কথাটা আপনার কাছে শেয়ার করে খুবই ভালো লাগছে।
0: থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ,
1: সম্ভব হয় এই সিনেমা দিল তো পাগলের
0: টাইটেল অবশ্যই অবশ্যই
1: খুবই ভালো লাগবে। ধন্যবাদ,
0: থ্যাংক ইউ সো মাচ আনে কে লিয়ে সাথে জুড়নে কে লিয়ে। दोस्तों कभी कभी फिल्म की कहानी से ज्यादा उसकी लोकेशन याद रह जाती है, कभी कोई ट्रेन, कभी कोई पहाड़, कभी कोई समुद्र और कभी कोई ऐसा शहर जहां हम खुद कभी गए ही नहीं लेकिन फिल्म देखकर लगता है जैसे वहां घूम आए हूं। अब एक ऐसे और अगस्त की फिल्म याद करते हैं, इस बार साल 2018 की, एक ऐसी फिल्म जिसमें एक आम आदमी की जिंदगी परिवार और शराब के नशे में उलझी कहानी थी। फिल्म थी हैप्पी फिर भाग जाएगी। सोनाक्षी सिन्हा, डायना पेंटी और जिमी शेरगिल, और फिर से शुरू हुआ हैप्पी का एक नया सफर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हैप्पी फिर भाग जाएगी का अगला ट्रैक की तरफ।

अगिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्या कुमार लेकर आए थे ये ट्रैक। कंपोजिशन सचिन जिगर के लिरिसिस्ट वायु। दोस्तों, देखते ही देखते पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर। अगस्त के इस खूबसूरत महीने में फिल्मों की इतनी सारी यादें हैं कि एक घंटे में महफिल भी कम पड़ जाए। तो चलिए कुछ और पन्ने पलटते हैं। अब चलते हैं साल 2021 की ओर। एक ऐसा दौर जब सिनेमा घर लंबे समय के बाद धीरे धीरे वापस अपनी रौनक हासिल कर रहे थे। 19 अगस्त 2021 में रिलीज हुई थी एक ऐसी फिल्म जिसमें था जासूसी का रोमांच, एक्शन और देशभक्ति। नाम था बेल बॉटम। अक्षय कुमार और वाणी कपूर की इस फिल्म के संगीत से काफी विविधता थी। अब सुनते हैं इसका एक ऐसा गीत जिसमें पंजाबी लोक धुन का रंग है और आधुनिक संगीत की मस्ती भी। आइए सुनते हैं हमारा ये ट्रैक। और ये दोस्तों, ये होगा हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी ट्रैक आप लोगों के लिए।

0: फिल्म बेल बॉटम से दोस्तों आप सुन रहे थे मनिंदर भुट्टर और जारा खान की आवाज में ट्रैक, मनिंदर भुट्टर तनिष बख्शी का संगीत और बोल लिखे थे बाबू मनिंदर भुट्टर और तनिष बख्शी ने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा कार्यक्रम होते हैं समाप्त। मुझे यानी आपके दोस्त अर्ज अंकित को दीजिए इजाजत, मिलूंगा फिर मैं कुछ दिनों बाद। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा आप लोगों से, और फिर होगा धमाल, फिर होगा एंटरटेनमेंट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलता हूँ जल्द और अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आप लोगों के लिए।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
2: वेल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, द आकाशवाणी पॉडकास्ट लेकर एक बार फिर

0: से हाजिर हूँ और आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम तो आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो जैसे ही आया ना स्टूडियो में, तो इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरी ऑडियंस में भी उत्साह है। एंड इंडियन आइडल सीजन 16 के सेकंड रनर अप मनराज वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पाजी आप?
1: आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, चंगा एकदम। आप आ गए ना, मतलब बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है और बातचीत करने के लिए जब आप आ गए हो। कहते हैं कि सपना एक देखो ना, मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो बचपन के सपने जब आप साकार करने के लिए निकलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत दिल्ली से हुई, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद म्यूजिक कैसे आया लाइफ में?
1: शुरुआत मेरी एक्चुअली मेरी फैमिली में म्यूजिक वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में, सिवाय मेरे चाचा के। अच्छा। तो जैसे कि मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि मेरे चाचा की वजह से मैं म्यूजिक लाइन में आया हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो लाइक वो भी जागरण होते हैं, माता की चौकी, इन सब में ना पहले ढोलक बजाते थे वो।
0: अच्छा।
1: और तो वो ढोलक घर में पड़ी रहती थी, ठीक है, ढोलक तबला ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी घर में होते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के ये थोड़ी सी अंदर रहता था कि यार ये क्या चीज है, कैसे बजाते हैं, कैसे बजता है। और जागरण में जाता था तो बहुत सारे सिंगर्स आके गाते हैं।
0: किस एज की बात कर रहे हैं? वैसे ये, तो अभी भी बहुत यंग है आप।
1: दिस इज ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं सात आठ साल के आसपास की बात है।
0: क्या बात है,
1: मतलब उस टाइम पे ये था कि देखना सिंगर्स को गाते हुए, देखना माइक पकड़ के गा रहे हैं, कैसा माता की बेटे गा रहे हैं, और भी मतलब इतना सुरीला गा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा, और इतना अच्छा कैसे लग रहा है सुनने में, इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वहीं से थोड़ा सा बस ये कीड़ा म्यूजिक का धीरे धीरे

0: होता है, किसी का येलो ग्रीन, तो ऐसे हाउसेज में कंपटीशन होते थे, तो वहीं पे सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, स्कूल मतलब स्कूल में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी, तो वहाँ पे कंपटीशन से पार्ट लेना, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं प्राइजेस जीत रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है आवाज़ में, तो वहीं से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया और म्यूजिक सीखता गया और अच्छे अच्छे गाने गाता गया, तो धीरे धीरे घर में भी पता लगा कि यार ये तो गाता है, इसकी तो आवाज़ में कुछ तो है, तो फिर मेरे चाचा ने मुझे वहाँ से थोड़ा थोड़ा जो बेसिक होते हैं, जो लाइसेंस होते हैं ना सिंगिंग के, वो देना उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहाँ से, तो वहाँ से फिर मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आता गया। फिर वहाँ से कॉलेज, मतलब जब जब मैंने 12th पास आउट की, उसके बाद मैं गया DU में, शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मतलब उससे पहले मेरे पास दो तीन ऑप्शन और थे, जैसे NDA के एग्ज़ाम दिए मैंने, एनडी मतलब बहुत सारे, मतलब कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊं, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं, कभी कभी कभी मेरा एडमिशन हो रहा था वहाँ पे चंडीगढ़ एस्ट्रोनॉटिकल्स कॉलेज में, बीच में सोच लिया मैं पायलट बन जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा। फिर उसके बाद बेसिकली अंदर से समझ में आया कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक ही पसंद है और अगर मुझे कुछ करना है तो म्यूज़िक में ही करना है, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार पापा, मैं जा रहा हूँ DU में। तो DU में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, आपको पता ही है, जो मतलब काफ़ी सारे मतलब एक्टिंग सोसाइटी होती है, म्यूजिक सोसाइटी होती है, तो एडमिशन लेते के नेक्स्ट, मतलब एडमिशन आज फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, कल ही मुझे पता लगा कल ऑडिशन चल रहे हैं रिवाब सोसाइटी के, जो हमारी म्यूजिक सोसाइटी है कॉलेज में, तो मैं खुश, मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया, वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब उन सब के अंदर के ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया और मैं खुश, मैं कहा मेरा तो एडमिशन आज हो गया, मैं म्यूजिक सोसाइटी में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। तो वहीं से फिर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट हुए, फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी बहुत नॉलेज होती है म्यूजिक की, तो फिर वहाँ से उनसे भी सीखना मैंने चालू कर दिया, तो मतलब ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैंने कभी सीखा लाइफ में, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे चाचा हो गए या जितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हो गए जो मेरे सीनियर्स हैं, जो गुरु, मतलब मैं जिनसे भी आज तक मतलब मैं मिला हूँ म्यूजिकली, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मतलब उनको पता भी नहीं हो, मतलब उनको आइडिया भी नहीं होगा कि मैंने उनसे सीख लिया, बट मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: कुछ चीज़ें मुझे अगर आपकी अच्छी लगेंगी तो मैं आपसे ग्रैब कर लूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा,
1: नहीं देखो,
0: तो
1: मैंने
0: बस वो
1: कोशिश की है कि मैं आज थोड़ा सज धज के
0: है।
1: आऊं, लेकिन स्टाइलिस्ट जो है, अगर बात करें या फिर स्टाइलिश किंग की बात करें, तो आपको ज्यादा टाइटल सूट करता है
0: नहीं,
1: कहीं ना कहीं। इंडियन आइडल में
0: अभी
1: मिला
0: तो
1: है आपको ये
0: नॉर्मल
1: खिताब, है ना,
0: जी
1: रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। एंड हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं, हम सिंगिंग की भी बात करते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे लेकर आते हैं आप? और ये टर्न जो था, ये आई थिंक ये कोविड के टाइम में आया था।
0: ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते,
1: हाँ हाँ
0: मतलब हाँ होता है, क्योंकि देखो अंदर एक स्टार्टिंग से कीड़ा रहा है अंदर की, मुझे अपना म्यूजिक बनाना है, मेरे को इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं, लाइक अपनी जो क्रिएशन है वो लोगों को सुनानी है। अब जो गाने ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हैं वो तो बने ही हैं, वो तो हम गाते ही हैं, लोगों को मतलब ऑलरेडी पसंद है, बट जो एज ए म्यूजिक कंपोजर एक ना विजन होती है कि मैं चाहता हूँ कि यार इस टॉपिक पे ये गाना बनाऊँ क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है, अभी मेरा मन कर रहा है तो मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने गाने के फॉर्म में, ये मोटिवेट करना है, या मुझे इस तरीके का प्यार फील हो रहा है, क्या यही लोगों को होता है, चलो यार इसके ऊपर भी गाना बना के देखते हैं, मतलब ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी है क्रिएशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाली गाना ही नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोग फील करते हैं, लाइक म्यूज़िक में हर इमोशन होता है, सैड होता है, रोमांटिक होता है, एनर्जी हो गई, डांस हो गया, एवरीथिंग, तो हर चीज़ फील होनी लोगों को ज़रूरी है, म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक हील करता है, तो वो हील तभी करेगा जब जब वो आपके फील पकड़ेगा अंदर की, है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे अच्छे अच्छे और उनकी जो लाइफ में हुआ है वो सारे सिनेरियोज देख के, मुझे डांस पे भी गाने बनाने हैं, मुझे सैड भी बनाने हैं, मतलब लोग फील कर पाए।
1: चलिए, आपने हीलिंग की बात कही है, एक बात कही जाती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसान यह सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है, माता जी की
0: बिल्कुल
1: तबीयत अब कैसी है और उनका योगदान कितना रहा है, जब भी आपके लाइव शो में आती थी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी।
0: मॉम का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, वो बहुत इमोशनल है, उनको बहुत दिक्कत भी है, जैसे उनको सांस की दिक्कत है, उनके लंग की जो लंग्स एक होता है ना, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की लंग कैपेसिटी होती है वो अगर 100% है तो उनकी वो 35-40% है, तो और ऊपर से पोल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, और कुछ भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूल जाती है, तो अब

0: ऐसी सिचुएशन में उनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है। अब मतलब बिफोर आइडल उनके माइंड में ये चलता रहता था कि यार ये क्या सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में से मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े मतलब स्टेप बैक करते हैं कि नहीं यार तू ये काम मत कर, नहीं तू ऐसा ही कर, नहीं होगा इसमें कुछ तेरा। तो मतलब मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला नहीं मेरी फैमिली से कि यार बोले कि नहीं यार तू मतलब सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान मेरी लाइफ में रहा है वो है मेरी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ना बैक एंड पे चीज़ चल रही होती है ना मेरे, जो मेरी बैक के पीछे जो मुझे सपोर्ट हर टाइम जो मुझे दे रहा होता है वो मेरी मम्मी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ मेरे पापा को डाउट है तो मेरे वो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो पहले ही डाउट उनका मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये करेगा उसमें ऐसे ऐसे करना, हो गया खत्म।
1: मतलब साथ है हमेशा,
0: मतलब मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर मेरे दादा ने कुछ पूछा है कि यार मनराज के साथ ये, तो मेरे से पहले मम्मी आके बोल देंगी लो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कर ले खत्म।
1: वैसे तो माँ और फैमिली का जब जिक्र आता है तो हर कोई जो है काफी इमोशनल हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब माँ का जिक्र आए या माँ की तस्वीर सामने आए तो कोई गाना आपके जहन में आता है यार माँ को लेकर जो डेडिकेट करना चाहे? आई एम श्योर के स्टूडियो में जितने लोग हैं या शो भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कोई भी एक भाव।
0: ओके, आते तो वैसे बहुत सारे हैं बट अभी कौन सा भाव सुना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा।
1: जो भी मतलब प्यार से रोमांटिक किंग तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन हाँ मतलब जो आपके बहुत करीब है।
0: अगर ऐसा अगर कुछ वो करना है रिलेट करना है तो एक गाना है मेरे पास, मेरा फेवरेट भी है
1: जी।
0: तो वैसे तो वो गाना मतलब अपने लवर के लिए गाते हैं बट उस गाने का मीनिंग मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी माँ है, तो मैं वो मैं सुनाता हूँ।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या कमाल की आवाज है आपकी। एंड कमाल तो आप करके भी आए इंडियन आइडल में, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मजाक होते हैं, एंड प्रेशर होता है?
1: बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वो टीवी पे देखने में लगता नहीं, मतलब लगता नहीं है लोगों को, बट बैक स्टेज की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत प्रेशर होता है भाई। देखो मतलब मुझे पता लगा है कि अभी एक घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, तो वो एंग्जाइटी और वो जो नर्वसनेस ना, वो एक घंटे पहले आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है 4 से 5 मिनट, हमें 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है वहाँ पे स्टेज पे। अब आपके पीछे इतने सारे लाइट्स वाले सब कुछ सेटअप हो रहा है, एक घंटे तक साउंड चेक चल रहा है। अब साउंड चेक होने के बाद आपके पास 5 मिनट है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, ठीक है। मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही हो, बुरा हो गया तो फिर जजेस के स्कोर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यही रहता था कि यार गलती ना हो जाए, यार मैं क्या मुझे लिरिक्स याद हैं, मैं मतलब रट के देखना, कभी कभार तो हाथ पे लिख लेते थे कुछ, एक आधा वर्ड होता था ना जो हमेशा अटकता था गाने।
0: आजकल वो कैमरे में पता लग जाता, पर
1: नहीं पता लगता, मतलब ये ये ना सिंगर ही समझ सकता है। जैसे गानों में 4-4 अंतरे हम गा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे अगर कोई यहाँ बैठ के कोई गाना गा रहा हूँ, कुछ एक आधा वर्ड ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के। लेकिन अभी वहां पे क्या होता है कि पहला अंतरा सही गा दिया, दूसरा सही गा दिया, तीसरा सही गा दिया, जब चौथे की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि लिरिक्स है क्या। तो उसके लिए कुछ ना एक मतलब कुछ एक मार्क लगा के मैंने एक दो बार किया ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोई वर्ड मुझे याद नहीं रहता, या अंतरे का पहला वर्ड कभी कभार क्या होता है ना याद आता है तो पूरा अंतरा याद आ जाता है। तो जो अंतरा मुझे याद नहीं रहता था उसका पहला वर्ड मैंने लिखा, हाँ अभी अगला ये है, ठीक है, याद आ गया वर्ड देखते पूरा अंतरा। तो ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि देख के तो नहीं गा सकते आपको, ना आपको टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा।
0: चलो हाथ पे लिखा है कि आपने बात कही, आपका टैटू भी काफी अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू।
0: ये आपने लेटेस्ट करवाया अभी?
1: ये हाँ मैंने अभी टैटू लेटेस्ट करवाया, कल ही करवा के आया हूँ।
0: अच्छा क्या लिखा हुआ है इस पर?

0: इस पे मैंने लिखा है वन लव, दिस इज वन लव,
1: और कुछ नीचे डेट ऑफ बर्थ भी है आई गेस कुछ,
0: या वन लव और उसके नीचे मेरी मम्मी का सन ऑफ बर्थ है रोमन नंबर्स में.
1: ओह,
0: एक मेरे टैटू यहाँ पे शोल्डर पे है जिसमें मैंने, जिसमें मेरे फादर का है सन ऑफ बर्थ, और ये इसमें मेरी मम्मी का.
1: क्या बात है, तो उनको दिखाया. माता जी का क्या कहना था?
0: देखो पहले तो उनको टैटू से बहुत प्रॉब्लम थी.
1: हर पेरेंट्स को होती है कहीं ना कहीं.
0: होती है. तो जब उन्हें पता लगा अच्छा मेरी सन ऑफ बर्थ लिखा, ये फिर ठीक है, बढ़िया है. तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है.
1: क्या बात टैटू है. कहते हैं ना इशक होता है हीरे आधे वरदा, रब तो छुपाई दावे साजना. द ग्रेट लेजेंड सतेंद्र सरताज
0: जी,
1: उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है आपको
0: जी.
1: कैसी फीलिंग थी, आपने कैसे मतलब क्या भाव थे, नर्वसनेस उस दौरान थी एक लेजेंड के साथ परफॉर्म करना?
0: नर्वसनेस तो नहीं बोलूंगा मैं, बट उस टाइम मैं बहुत ब्लेस्ड था. एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था रीयूनियन, जिसकी आप बात कर रहे हो
1: जी,
0: रीयूनियन एपिसोड था, उसमें आए थे वो. और क्या होता ना कि जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सिख कम्युनिटी, एंड मतलब पंजाबियों के लिए, नॉट ओनली सिख, पूरे पंजाब के लिए, मतलब देश भर में और जितने मतलब पूरी दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं सबके लिए सतेंद्र सरताज बहुत बड़ा नाम है ना. क्योंकि उनकी जो गायकी है वो खाली गायकी नहीं है, उनके गायकी में भी लेसन्स हैं. वो जो लिखते हैं, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी गायकी में लेसन्स हैं. तो बहुत पहले से, लाइक जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 17-18 साल का था, तब से उनका जो मतलब गाने, उडारियाँ हो गया, सज्जन राधे जिसके आप बापी, जो अभी आप गाना गा रहे थे, तो सबके गाने के लिरिक्स आप देखोगे ना, अगर आप सोचने समझने जाओगे कि इन्होंने बोला क्या है, मतलब गाने से ज़्यादा लिरिक्स आपके दिल में बैठ जाएंगे, फिर आप और प्यार करोगे उनसे. तो वही ब्लेसिंग थी, वही एक ऐसा बोल सकते हो कि हाथ था सर पे ऊपर वाले का, कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला. और बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी.
1: अच्छा, हाँ, बैक ऑफ द स्टेज भी काफी बातें हुई होगी उनसे.
0: बैक ऑफ द स्टेज यही बातें होती हैं कि मतलब बैक ऑफ द स्टेज मोस्टली क्या होता है कि टीवी पे नहीं दिखाते कि जजेस हमें आके बता रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं. तो बैक स्टेज में यही होता है कि मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल खत्म हुई, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं जा सकता हूँ जजेस के पास भी, यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी
1: फीडबैक के लिए.
0: जैसे जैसे गाने के बीच में कोई भी जैसे इम्प्रॉम्प्टो पार्ट डाला, जैसे वो भी कह रहे थे कि तबले का आप डालते हो बीच में, अच्छा लगता है ये सब.
1: तो ये
0: तो मुझे भी कहीं ना कहीं मतलब वो डर रहता था. मतलब जो हमारे मेंटर हैं आनंद सर, जो इंडियन आइडल जो सबकी तैयारी करवाते हैं बैक स्टेज, तो मतलब उनसे सबसे पहले तो उनसे पूछना कि सर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी आइडियाज लगा के हम कुछ आपस में वो उसको बनाते थे. तो मेरी फिर ये सब करने के बाद टेंशन ये कि क्या ये जजेस को पसंद आएगा. देखो ऑडियंस का तो बाद में है, लेकिन पहले जो बैठे हैं उनको पसंद आना चाहिए. तो मतलब परफॉर्मेंस एक दो बार खत्म होने के बाद में जाता था कि मैं सर ये पार्ट कैसा लगा, सर ये मैम ये मतलब श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह बाजी, तो उनसे पूछते थे कि ये आपको पार्ट कैसा लगा. हाँ यार मजा आ गया. कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही खड़े होते कि भाई यार क्या कर दिया, मजा आ गया. बैक स्टेज यही सारी चीज़ें चलती है. और सतेंद्र पाजी के साथ भी सेम यही चीज़, उन्होंने मुझे उस एपिसोड में ब्रॉच, जो पगड़ी ब्रॉच वो डालते हैं
1: जी,
0: वो भी उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे.
1: वो हर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं.
0: हाँ वो डालते ही हैं, उनका जो भी गेटअप रहता है शोज का वो डालते हैं. तो मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंडस्ट्री के बारे में. एक तो उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा ऐसा है कि हर कोई पिघल जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई. तो उनसे ये भी बहुत सीखने को मिला कि सबके साथ नरमी से पेश आओ,
1: डाउन टू अर्थ
0: रहो. यस, तो ये सब चीज बैक स्टेज ये सब चलता है.
1: क्या बात है. कोई ऐसे लम्हे, कोई फनी किस्सा जो मतलब किसी के साथ आपने शेयर ना किया हो, यहाँ पर करना चाहे, चलते लाइव शो में हुआ हो या फिर जजेस के साथ?
0: फनी किस्सा ये है कि एक मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान के का, आई थिंक वो एलिमिनेशन एपिसोड था, टॉप 10 का एलिमिनेशन एपिसोड था वो. उसमें मैंने गाना गाया था वो मेरी जान. तो क्या हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया स्टेज पे, और वो ना स्टेज पे पीछे से जो आइस होती है ना, ड्राई आइस जो आप देखते हो कि धुआं धुआं आता है, वो होती है ड्राई आइस. तो वो आ रही थी स्टेज पे पीछे से. तो मैं फुल मैं वहाँ पे कूद कूद के गाना गा रहा हूँ मस्त, बिल्कुल रॉक स्टार बन के. साथ में गिटार पे शांतनु भाई खड़े हैं, वो अपने गिटार बजा रहे हैं. तो क्या हो गया, अंतरा खत्म हुआ. अंतरे के बाद ना एक पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत हाई कुछ गाना होता है, तो उसको गाने के लिए मैं एकदम ऐसे पीछे हुआ तो स्टेज पे गिर गया. वो टीप में चलते
1: शो में. हाँ.
0: तो वो बड़ा फनी था. फटाफट गिर के मैं उठ के दोबारा गाने लग गया, नाता समझे ना ये दिल मेरा. तो फिर सब देख रहे हैं कि हाँ यार. तो मतलब ये सब चीजें फनी होती रहती है बीच बीच में, ये टीवी पे आया नहीं.
1: वेल, उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते हैं, लेकिन मौसम कितना मतलब मिजाज चेंज करता है. दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली से शुरुआत आपकी हुई है, एंड शुरुआती दौर में आप यूट्यूबर भी रहे, आई गेस यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी।
0: यूट्यूब नहीं, मैं मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हमारा हम जैसे मारविक बैठा देखो आप, मतलब हम दोनों सेम ही क्लास में थे और लोगों को पता है। अभी फॉर एग्जांपल आइडल में भी मैंने एक गाना किया था बरसात, बरसात गाना आपने देखा होगा, जिस मतलब आइडल में पहली बार हुआ था कि किसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल
1: ऐसा बहुत कम होता है,
0: ऐसा बहुत कम है, ऐसा होता ही नहीं है कि आइडल में कोई भी कंटेस्टेंट अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मौका मुझे मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल था उस टाइम पे। और तो फिर वो गाना मारविक ने ही लिखा था, मैंने गाया, तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं साथ में। और तो गाने बनाते हैं हम, गाने बना के सेल करते हैं। हमें ऑलरेडी, हम कॉलेज में मिले थे तो कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था हमने, तो वहीं से फिर हमने सोचा कि अपने गाने बना के यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो हमारा चैनल भी है द ट्विस्टी ट्यून्स नाम से, तो वहीं पर हमारे गाने भी आते हैं। तो हम मतलब शुरुआत सब मतलब हर किसी म्यूजिशियन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कहीं तो इंस्टा पे डालेगा, साउंड क्लाउड पे या यूट्यूब पे, तो कुछ हमने भी ऐसी करी शुरुआत अपनी।
1: कॉमेडी किंग भी आपसे मिले थे, द कपिल शर्मा,
0: हाँ,
1: एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आपको,
0: बहुत ही अच्छा एपिसोड था वो,
1: हाँ, कि पाजी इतनी सारी चीजें आप कैसे करते हो, कंपोजिशन भी खुद कर लेते हो, गायकी तो कर ही रहे हो एंड प्रोडक्शन में भी हो, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो पाती है?
0: मल्टीटास्किंग ऐसे हो पाती है क्योंकि दिल बोलता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि कोई चार्ट मुझे फॉलो करना है, ये करना है, बस वो दिल से आता है। मतलब मेरे अंदर एक ये है, मतलब जो एक आग रहती है ना अंदर की, मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मैंने सोचा है कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो वो मैं कुछ ना कुछ करता रहूँगा, अगर मैं उस चीज़ में नहीं हाथ बढ़ाऊँगा तो फिर मतलब उसका फ़ायदा ही नहीं है, वो मैं उस चीज़ को कैसे पूरा करूँगा, कैसे गाने बनाऊँगा। तो गाने बनाना है, म्यूज़िक प्रोडक्शन करना। अब गाने बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है, म्यूज़िक कंपोजिशन क्या होती है, म्यूज़िक अरेंजमेंट्स क्या होती है, गाने को किस तरीके से गाना है, कितने स्टाइल में गाना है। तो जब मुझे ये पता है कि गाना बनाना है तो फिर मेरे अंदर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि गाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, और अगर मुझे कोई चीज उनमें से नहीं आती तो वो मुझे सीखना है,
1: क्या
0: तो फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाता अंदर से।
1: कपिल शर्मा एपिसोड के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे।
0: वो मैं एपिसोड की बात कर रहा था, एपिसोड बहुत अच्छा था, वो बहुत ही एनर्जेटिक एपिसोड था। उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी आप सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है उनकी एनर्जी कैसी है। तो जब मतलब उससे जब वो आए, उससे हाफ डे शूटिंग का काफी शांत, मैं बोलूं तो बोरिंग चल रहा था, और जैसे ही वो आए, जो हाफ एपिसोड में वो आए, तो मतलब एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया। फिर हमारा गाने का एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया, फिर अपने आप को प्रेजेंट करने का। एक होता ना पंजाबी जब आ जाता है तो फिर सबको पता ही एनर्जी का क्या होता है।
1: लाइव में तो उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन लाइव के बगैर अगर हम बात करें तो उनसे बात हुई
0: नहीं, उनसे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, मतलब ऑन स्टेज ही बात होती। जैसे उनके साथ मैंने छल्ला गाना गाया था, तो जब साउंड चेक हो रहा होता है तो हमारे पास आधा पौना घंटा होता है साउंड चेक करने के लिए, तो वही दोनों खड़े हुए थे स्टेज पे, हम लोग बात कर रहे थे बस उतना।
1: बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे फेवरेट मेरा पता है कौन सा था, जब आप गा रहे थे, आपने सिंगिंग शुरू की थी, हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई थी, वो एकदम उनके लिए शॉकिंग था, और मतलब एक अलग ही गूज़बम्प ऑडियंस को भी आ गए थे, वो क्या था वो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसी फीलिंग थी?
0: नहीं एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार तो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, मैं जब भी गा रहा होता हूँ ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोस देखोगे, मेरी आंख बंद रहती है, मेरा ध्यान सिर्फ गायकी पे होता है कि मेरा सुर ठीक लग जाए, मैं लिरिक सही गा दूँ, मेरा ध्यान ऐसे ही होता है। तो बाद में लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो ना, ऐसे ही वो यार मैम तो खड़े हो गए थे, या मैम बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, श्रेया मैम खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं आधे गाने में, अच्छा क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, मैं गाने पर ध्यान रहता है मेरा, बस बाद में फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छे से गाऊं, और वो तो बाद में टेलीकास्ट में देखता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन था क्या, ओ नाइस, मुझे पता होता तो मैं स्टेज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट करता हूँ।
1: ये तो होता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसने लाइफ एकदम बदल दी हो, जजेस ने आप पर्सनली आके आपसे बात की हो और आपको लगा ये वाली जो राय है ना ये मेरे साथ रहेगी हमेशा,
0: तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जजेस स्पेशली जब खड़े होते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। आई थिंक मतलब श्रेया मैम से, विशाल डडलानी सर से, बादशाह बाजी, ये तीनों खड़े हो गए, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपके म्यूज़िक को जब कोई पहचान लेता है, तो लास्ट फिनाले एपिसोड में बादशाह बाजी ने बोला कि यार ये बंदा, जैसे हम लोग मतलब वो अपने आप को भी और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, इन सबको पॉइंट आउट मतलब बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े अरेनाज फिल करे हैं, शोज होते हैं हमारे सोल्ड आउट, तो तुम भी करोगे, उन्होंने मुझे बोला। तो क्या होता है जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको ये चीज़ बोल देता है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार शायद मतलब जैसे इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना लिया ना, तो इसका मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि यार आज दिलजीत दोसांझ पाजी ने या करण औजला पाजी ने ये सब फिल किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि वैलिडेशन चाहिए होती थी कि यार कोई भी हमें देखे, कोई बड़ा जो स्टार है उस मतलब उसकी नजरों में आ जाए, है ना। मतलब यही सपना रहता था कि यार क्या इन्हें पता भी है हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बादशाह बाजी को पता होगा, क्या दिलजीत को पता है कि भाई मैं मतलब मनराज कौन है। हमें तो पता है दिलजीत दोसांझ कौन है, ठीक है,
1: बिल्कुल,
0: पर क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अब जब ऐसा फील होता है ना कि नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मनराज वीर कौन है, तो एक वो सेटिस्फेक्शन और एक वो कॉन्फिडेंस ना वो अंदर आ जाता है। और मतलब बहुत सारी चीजें बोली है मुझे, विशाल सर ने भी बोला कि यार यू आर अ रॉक स्टार, ठीक है, आपकी बहुत यूनिक आवाज है, ठीक है। श्रेया मैम ने बोला कि यार इंडियन आइडल में कि आप इस सीजन के इंडियन आइडल की खोज हो। तो इतनी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो बस एक ये है कि अंदर और काम करने की इच्छा आ जाती है।
1: वो जब कॉम्प्लीमेंट मिला आपको बादशाह पाजी से, वो वाला गाना एक बार हो जाए, कम ऑन, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, लिसनर्स के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो गाने से पहले मिला था, बट मैं गाना गा देता हूँ। एक्चुअली वो वही गाना था जो मैंने ऑडिशन में गाया फिर तारा हूँ घर बदर। तो क्या था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इंडियन आइडल पे। लास्ट में क्या होता है कि जो टॉप थ्री थे हम सबको अपने अपने जर्नी के पहले पहले सॉन्ग परफॉर्म करने थे, तो मैंने भी ये परफॉर्म किया था, तो उन्होंने इससे पहले ये बात बोली थी, और तो मैं ये गाना गाता हूँ अभी।

0: क्या बात है, निशान तो आप छोड़ ही रहे हैं हर किसी के दिल में। वेल आप तो सबके फेवरेट हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, क्या कोई इंटरनेशनल सिंगर जिसने बहुत यू नो इंस्पायर किया हो आपको लाइफ में?
1: इंटरनेशनल पहले तो मैं इंडियन इंडियन की बात करता हूँ
0: जी।
1: इंडियन में जो सबसे पहली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो तो वही है, दिलजीत दोसांझ। सबसे पहली इंस्पिरेशन कि मतलब एक होता है ना कि देखो मैं भी सीखूं, मतलब सीख छोड़ो, मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी हैं और पूरे पंजाब को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, सर पे पगड़ी है, मेरी भी सर पे पगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि यार और जो वो भी जिस टाइप का म्यूजिक कर रहे हैं सेम टाइप का म्यूजिक मैं ही कर रहा हूँ। तो मतलब एक होता है कि यार हाँ अगर ये इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं, तो मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए अभी तक वही है। और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो दो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो ब्रूनो मार्स और एक है वीकेंड। इन दोनों का म्यूजिक
0: एकदम दोनों ही वाइब अलग होगी ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मतलब फ्यूजन और पार्टीज वाली वाइब आपको ज्यादा पसंद है।
1: यस,
0: दिलजीत पाजी की आपने बात की है, गबरू तो वैरे ने भी मिठा बोल दा, नहीं तू तो फिर जट दा प्यार वाली एक गाना एक
1: क्या
0: कुछ हो जाए उनके लिए भी कुछ हो जाए
1: उनके लिए।
0: हाँ हाँ डैम डाद तोड़ दो जिन्ना तेरा पार गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए, गल विच पाया 40 लाख बोलदा, डालर च 80,000 गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए। क्या बात है, क्या बात है, एकदम पार्टी वाली वाइब जो है बन गई है स्टूडियो में भी, बहुत ही कमाल। वैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप पंजाबियों से बात कर रहे हैं ना खासकर, तो फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसे दा दुखायो।
1: सही बात है,
0: exactly. तो खाने पीने के शौकीन है, मतलब आपको दिल्ली का फूड पसंद है?
1: दिल्ली का बहुत ज्यादा पसंद है। मैं
0: परहेज नहीं करते हम लोग गले के लिए,
1: मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता, हालांकि बोलते हैं लोग परहेज करो, बट मैं बिल्कुल नहीं करता। उसका रीजन ये है कि यार एक बहुत अच्छी फिलोसफी है, अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे बस। और ये फिलोसफी मैंने सीखी है मेरे मेंटर, इंडियन आइडल के जो मेंटर है आनंद सर, उनसे।
0: वैसे कहते हैं ना आवाज की दुनिया में अगर आप हैं तो तय चाहिए।
1: हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो चीज अच्छी लग रही है, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम भी नहीं खाते, कुछ सिंगर से बोलते हैं आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मैं खा लेता हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ, मुझे कुछ इतना
0: परफॉर्मेंस से पहले या एक रात पहले?
1: नहीं नहीं परफॉर्मेंस से पहले तो ऑब्वियसली नहीं यार, मतलब आधे घंटे
0: सेलिब्रेशन के लिए,
1: परफॉर्मेंस से आधे घंटे पहले से थोड़ा सा परहेज करो। मतलब ये है कि नॉर्मली आइसक्रीम भी खा लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा ज्यादा बहुत तेल वाला खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत तेल वाला जो बनाता है खाना तो फिर तो मतलब सबके लिए ही बेकार है, वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए तो है ये गले के लिए। तो हाँ चिकन रोल हो गया, नॉन वेज तो कुछ भी दे दो, वेज भी दे दो,
0: आने दो है ना,
1: आने दो।
0: वो किसी ने पूछा ना पंजाबियों से कि सवेरे की करोगे, सवेरे रोटी खावांगे, शाम नू रोटी खावांगे, पाजी रात नू पाजी सोवांगे, सारा दिन रोटी थोड़ी ना खाई जाएंगे। तो खाने पीने के शौकीन तो है ही, लेकिन एक बात और कर लेते हैं हम। आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक की हमने बात की है, आपको लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड पंजाबी म्यूजिक जो है वो कहर बर पा रहा?
1: आने वाले समय तो अभी भी कर रहा है, देखो
0: राइट,
1: अभी भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत, मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो इंडी जो इंडिया का पॉप म्यूजिक है, मतलब देखो पंजाबी तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है,
0: राइट,
1: बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। और तो एक चीज तो श्योर है कि आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बहुत टॉप पे होने वाला है। लाइक पहले होता था ना कि चलो आज फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आज जैसे बॉलीवुड में कोई गाना गाना होता है तो कोई देखता नहीं है कि यार कोई मुझे वो मतलब ये कोई एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्टर है मुझे चांस दे दे, या मुझे ये चांस दे दे वो चांस दे दे, आज कोई देखता नहीं। आज तो ये होता है कि सीधा अपने गाने बनाओ, अगर आप ले रहे हो आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हमारे पास चैनल है हम रिलीज कर देते हैं।
0: आप क्या एंजॉय करते हैं, प्लेबैक सिंगिंग के भी ऑफर बहुत मिल गए होंगे आपको, या आपको लगता है लाइव शोज ये ज्यादा चार्मिंग होते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, देखो सिंगर के लिए लाइव शोज भी इम्पोर्टेंट है, और सिंगर के लिए अपने गाने बनाना और अपने गाने रिलीज करना, अपना जो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली। तो शोज भी इम्पोर्टेंट है और अपने गाने बनाना वो भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको प्लेबैक करनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा सीन ये है, मेरा सीन ये है कि अगर प्लेबैक मैं करूँ, अगर कोई सामने से आके मुझे बोल रहा है कि यार मनराज ये करना है, मैं श्योर सर बिल्कुल करेंगे, और मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि लाइक मुझे प्लेबैक में मेरे को गाना चाहिए। मेरे सिर्फ दो ही डायरेक्टर बहुत फेवरेट हैं, मैंने बोला है पहले भी, एक है प्रीतम सर और एक है ए आर रहमान सर।
0: वाह।
1: तो अगर मैं दिल से फॉर एग्जांपल मुझे होगा ना कि यार मुझे प्लेबैक करना है इनके साथ, मतलब अगर थोड़ा सा वो आएगा ना कि यार प्लीज दे दो, तो वो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज मेरा ये है कि अपने गाने मुझे करने हैं, कोई चांस देगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शंस मतलब क्या है कि मेरे म्यूजिक को रिलीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा आर्ट है वो मैं गाने बनाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं ही करता हूँ, ठीक है, म्यूजिक कंपोजिशन कर लेता हूँ, हमारी अपनी जो है कंपनी है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, किसी की चांस की जरूरत थोड़ी है।
2: जो हो जाए वही बढ़िया। दिलजीत पाजी की हम बात कर रहे थे, अब वो मूवीज में भी आ गए हैं, आपको अगर मूवी का ऑफर आया तो यू विल गो फॉर इट?
1: मूवी का ऑफर, मूवी का नहीं पता, नहीं मूवी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है।
2: ओके,
1: हालांकि मूवी के लिए गाने देने हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
2: चलिए, दो बड़े नाम आपने लिए, प्रीतम एंड श्री ए आर रहमान, उनका कोई फेवरेट गाना हो जाए।
1: जरा से दिल में दे जगा तो, जरा सा अपना ले बना।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत सारे गाने प्रीतम सर के यार, मतलब बता नहीं सकता मैं, सारे फेवरेट है मेरे तो,
0: ये ऑल टाइम है ना। और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, दिल्ली का वेदर कभी भी आपके बॉस या गर्लफ्रेंड के मूड की तरह बदल सकता है, लेकिन करवट जरूरली है। मौसम इतना शानदार है, इस मौसम को देखते हुए कोई गाना, बरसात के मौसम को देखते हुए, सावन को देखते हुए कोई गाना,
1: बरसात को देखते हुए देखो मेरा अपना ओरिजिनल गाना है तो मैं दूसरा क्यों कहूँ,
0: इसे कहते हैं प्रमोशन।
1: या प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

0: क्या बात है, क्या बात हो जाए, बात तो बन ही गई।
1: इसमें कवि कह रहे हैं कि तू और मैं साथ चले जब जाना बरसात हो जाए, और भीगे साथ अगर तो
0: लगता
1: क्या ही फिर बात हो जाए।
0: क्या बात है, कवि ने सुन लिया हमारे मन की बात भी। वेल, मन की बात अगर हम करें, आपके दिल में बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। आपने जब शुरुआत की थी तो आपको लग रहा था कि मतलब मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनूं, लेकिन उसके बाद इंडियन आइडल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया? इंडियन आइडल क्या, किस स्तर पर आपको लेकर गया, और उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखे लाइफ में?
1: इंडियन आइडल से देखो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, मेरे म्यूजिक जो मैं करियर की बात करूं उसमें। क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक किक की जरूरत होती है, एक जो पुश मिलता है ना वो बहुत जरूरी होता है कि एटलीस्ट आप उस स्पेस में आ जाओ कि आप काम कर सको आगे, नॉट कि आपको फेम मिल जाए या पैसा कमा लो। नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कंपटीशन भी है इसमें इंडस्ट्री में, ठीक है, म्यूजिक लाइन में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से उठ के एक इंडस्ट्री के अंदर आना और इतना फेम मिल जाना, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचना, वो जो काम है ना वो काम इंडियन आइडल ने किया है मेरे लिए। बिकॉज आइडल से पहले लाइक हम यही देखते थे कि मतलब किसी को इंस्टा पे डीएम करना कि यार एक गाना रिलीज करना है, ये लेबल का कॉन्टैक्ट चाहिए, फिर मतलब नंबर निकाल निकाल के कॉल करते थे कि ये लेबल चाहिए, ये चाहिए। अब क्या हो गया कि अब वो काम बहुत ईजी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अब आप हाई भी भेजोगे ना तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, बताओ, अवेलेबल। तो मतलब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज आया है तो ये इंडियन आइडल की वजह से ही है।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना ये चीज जो फ्री फ्लोइंग जो चीज होती है, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, अब मुझे जहां रिलीज करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीजें एक मैं वो अकेला काम नहीं कर सकता। एक गाने को चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगर तो हो गया, लिरिक्स राइटर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गया, फिर कंपनी हो गई, फिर उसकी प्रमोशनल कंपनीज हो गई, कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है एक। तो वो टीम वर्क साथ में बंदे अपने साथ जोड़ना, ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे आके अच्छा सर्कल बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये जो काम किया है मेरे लिए, ये इंडियन आइडल ने किया है। हालांकि अभी कहानी, मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट है। आइडल ने तो पुश दे दिया कि करो, मतलब आपको मैदान में छोड़ दिया है ना, आइडल ने आपको लाके मैदान में छोड़ दिया, अब तुम जितना कर सकते हो करो, ये है। अब मैं कितना कर सकता हूँ,

0: पूरा दिन रिहर्सल्स हो रही हैं, फिर शूट पे जा रहे हो, मंडे टेक्निकल, ट्यूसडे को शूट हो रहा है, दो दिन का शूट हो रहा है लगातार। शूट होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, चलो जी अगले शूट की तैयारी करनी है। तो एक साल से ये चल रहा था, गा गा के बॉडी भी मतलब हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, गला भी पूरा एग्जॉस्टेड है अभी भी। और एक मतलब उस स्पेस से निकल के यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन आके, घर आके, मतलब जब आप बैठे होते हो ना, तो फिर सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या करना है। क्योंकि अभी एक साल तक बस वही था कि फिल्मों के गाने गा रहे हैं हम, ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जा कर के सोचने का मौका मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे गाने बनाने हैं, तो ये थोड़ा माइंड भी रिलैक्स
1: क्या है, चल रहा माइंड में
0: थोड़ा।
1: व्हाट्स नेक्स्ट?
0: हाँ, नेक्स्ट ये कि नेक्स्ट मैं अभी ईपी प्लान कर रहा हूँ।
1: ओके।
0: हाँ, ईपी में 5 गाने होंगे एंड वो मैं रिलीज करूँगा सितंबर में। उसमें देखो कि आई एम ट्राइंग कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, सबके साथ कोलैबोरेट हो, मतलब उस ईपी में नहीं, ईपी के आगे भी एल्बम करनी है, बट अभी सितंबर में एक मेरा प्लान है कि ईपी रिलीज करूँ मैं 4-5 गाने की। मतलब बेसिकली आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल म्यूजिक लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ही काम करना है। और जितना जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आइडल से अभी भी निकला हूँ तो लोग थोड़ा जानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं नहीं अगर एक्टिव रहूँगा तो फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है आर्टिस्ट, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही है कि बहुत सारे गाने निकालने हैं। सितंबर में भी करूँगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर एल्बम कर दूंगा, फिर मतलब बीच बीच में सिंगल्स आते रहेंगे, शोज भी होते रहेंगे,
1: लाइव शोज
0: होते रहेंगे।
1: I'm sure अभी ऑफर आ रहे होंगे काफी सारे।
0: हाँ जी, ऑफर तो आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं टूर पे भी जा रहा हूँ बाहर, अक्टूबर में।
1: ओह, आउट ऑफ इंडिया?
0: यस आउट ऑफ इंडिया अक्टूबर में, उस पर यूएसए, कनाडा, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे टूर है। ये एक महीने का टूर है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर कुछ प्राइवेट इवेंट्स भी हैं, कॉलेज फेस्ट भी है, चलता रहेगा ये सब। तो आर्टिस्ट की लाइफ में यही तो है, गाने बनाने, शो करने हैं।
1: कहते ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां, हर किसी को अपना किरदार निभाना,
0: लोगों को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ना है बस, जैसे हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फेस्ट हो, चाहे गाने बनाने के थ्रू हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है, क्योंकि लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं।
1: आजकल वैसे देखे ना तो यंगस्टर्स काफी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, हर कोई सिंगिंग करना तो चाहता है, लेकिन वो एफर्ट, वो कितना कुछ समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने आपको तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए, ये बहुत कम हो गया है लोगों में। यंगस्टर्स से कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: मैं यही बोलूंगा, देखो पहले तो मैं बोलने से पहले अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए काम करने के लिए उनके। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया आइडल का और मैं पहुँच गया, नहीं, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मैंने इससे पहले 3 बार तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, उसके पहले भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है जिसमें वीडियोस भेजते हैं। तो ये कि कभी भी रुको मत, अगर आप फेल हो रहे हो तो आप देखो कि आप क्यों, आप अगर आज ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए तो आप क्यों रिजेक्ट हुए हो, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हो। अगर कुछ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। आप अपने ऊपर काम करो कि हो सकता है ये कमी हो, शायद मैं इसको मुझे सुधारना चाहिए। अगर मेरे अभी सुर कच्चे हैं तो मैं 1 साल और रियाज करूँगा, सुर पक्के कर लूँगा, दोबारा ऑडिशन में आऊँगा। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो मैं जितनी बार भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मुझे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आई हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सुर पक्के करने हैं तो हाँ, मेरा रियाज चालू, और रियाज मतलब अगर मैं 2 घंटे रियाज करता हूँ तो 4 घंटे का चालू, ठीक है। अगर मुझे गाने नहीं याद या मेरी प्रेजेंटेशन वीक है तो उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये सब जब सारी चीज़ें आप करते रहते हो उसके बाद ही आप अपने अंदर मास्टरी लेके आओगे ना। तो जितनी बार आप फेल हो रहे हो आप उससे डरो मत, और कभी भी ट्राई करने से मत डरो। और बस मेरी यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं उनको मेरी यही सलाह है कि म्यूज़िक को ना, मतलब अगर आपका पैशन है, पहले आपको म्यूज़िक को ना रिस्पेक्ट करना है। म्यूज़िक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक बोलूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब नॉर्मली म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है, वेस्टर्न भी, क्लासिकल भी, रॉक भी, एवरी जॉनर ऑफ म्यूज़िक, सैड हो, रोमांटिक हो, म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करो पहले। और साधना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गाना सुना और आपने ऑडिशन में जाके परफॉर्म कर दिया, फिर बोलो अरे यार मैं तो अच्छा गा रहा था, इन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। बट क्यों? क्या? क्योंकि जो आपको जज करने बैठे हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं कि यार तूने ये चीज़ गलत कर दी, नहीं। और वो इसीलिए नहीं बोलते, वो यही चाहते हैं कि इसको खुद समझ में आए कि ये क्या गलती कर रहा है। क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई आपको हाथ

0: पकड़ के नहीं चलाएगा ना, आपको वो खुद समझना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने ऊपर बार बार, एक होता ना ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग भी अगर इंसान सही जगह करे ना तो वो काम, मतलब वो फिर अच्छी होती है।
1: वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब आप ओवरथिंक करते थे आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता था जब मनराज निराश हो जाते थे तो?
0: मैं ओवरथिंक हमेशा मैं ओवरथिंक हमेशा इसी में करता था कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या मैं ये कॉम्पोजिशन ऐसे कैसे गाऊं, इसमें कौन सी फील से गाऊं, मतलब मैं ये सोच रहा था। मतलब लोग ओवरथिंक करते होंगे, हाय इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो नाराज़ हो गया या ये वो हो गया, मैं ये सब सोचते हैं। मैं नहीं, मैं गाने में मुझे ये परफॉर्म करना है, मैं इसको ऐसे करूँ या वैसे करूँ, बस ये चलता रहता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ करो। और गाना,
1: वो गाना ऐसा रहता है ना हमारी लाइफ में जो हम गुनगुनाते हैं लूप में, और हमें लगता है कि हाँ मतलब कि अब हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तो आएगा जब जीत जाएंगे, something like this।
0: हाँ मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा strange है मेरे लिए। मैं कभी ऐसा कोई मेरा motivational song नहीं है किसको कि अगर मैं low feel कर रहा हूँ या कुछ feel कर रहा हूँ तो मैं ये वाला गाना गाऊँ, particular नहीं। मैं जब भी low feel कर रहा होता हूँ ना तो मैं सिर्फ music ही सुनता हूँ, music मतलब कि मैं गाने चला के साथ में गाने गाता रहता हूँ, एक डेढ़ घंटा मैं खुल के गाने गाऊंगा। तो क्या होता है फिर वो जो एक डेढ़ घंटे के अंदर ना वो लो वाले एंगल से बाहर आ जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन सा गाना रहता है सबसे ऊपर, टॉप पे?
0: सबसे ऊपर टॉप पे, हाँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं गाना वो मैं सुनता हूँ, मतलब वो काफी मेरे से जुड़ा भी हुआ है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाने की। एक तो मैं वो गाना है की बनू दुनिया दा बाय गुरदास मान साहब एंड दिलजीत दोसांझ साहब।
1: हो जाए कुछ लाइनें, हो जाए
0: तो कुछ भी होता ना। फॉर एग्जांपल शो भी कर रहा हूँ मैं तो शो की भी स्टार्टिंग में यार फोक गाना तो इससे बेटर कोई गाना है ही नहीं, और इतना अच्छा इस गाने में बोला गया कि यार की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने। मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो होता है ना कि यार किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसको पता है, तो उस पर छोड़ो, अच्छा काम करते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, जस्ट वन लव एवरीवन,
1: वन लव और हम
0: एक
1: भी
0: प्यार है, प्यार
1: ये सारा प्यार आपसे करते हैं, लेकिन लाइनें हो जाए,
0: लाइनें बिल्कुल बिल्कुल।

0: क्या बात है, जो तेरे नसीब का है वो तेरे कोल ही आएगा। हर रोज पौंड दी फरमाइश नगर,
1: क्या बात है।
0: ऑल इंडिया रेडियो पे पहले भी आया या फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं?
1: दिस इज माय फर्स्ट टाइम।
0: ओके, कैसा लग रहा है, कैसा फील?
1: बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। एंड मतलब ये भी आर्टिस्ट के सपनों में होता है कि यार मैं पॉडकास्ट में जाके बैठूं। अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब क्या होता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं और इतना मतलब नो वर्ड्स, दिस इज
0: लोग आपको आई एम श्योर के मतलब अनफिल्टर दिखना चाहते हैं ना, कि मनराज को हमने स्टेज पे तो देखा है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन स्टेज के पीछे मनराज क्या है, मनराज क्या क्या पसंद करता है। खाने में तो आपने बता दिया, सिंगिंग में भी आपने बता दिया।
1: मेरे को मैं बताऊं तो मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा फन करने में भाई। बस अपने में रहो, मजे करो। मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे शो चल रहा है, शो चल रहा है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऐसे ही बैठना है, एक कैमरा लगा हुआ है, ऐसे पीठ सीधी करके बैठो ऐसे, मतलब फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ अंदर से डायरेक्टर है भाई यार ऐसे, फिर सीधे बैठो। तो मतलब जब ये होता ना कट हो गया, फिर हाँ फिर अपनी मस्ती में बैठे हैं। तो वो वाली चीज है, मतलब अपने में रहना बिल्कुल पसंद है। बैक स्टेज वही करने में मजा आता है। खाओ, सबको प्यार बांटो, खाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूजिक।
0: वो पार्टी वाली वाइब भी होती है कभी कभी। हाँ, दिल्ली से वो लड़का और पार्टी ना करे ऐसा हो नहीं सकता।
1: देखो पार्टी हम कर नहीं पाए क्योंकि हमें अलाउड नहीं थी। बस पार्टी करना किसको नहीं पसंद। बट
0: मतलब पार्टी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ा सा नाच गाना हो गया।
1: मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स, तो रूम में क्या करते थे ना हम रोज रात को, जैसे सुबह प्रैक्टिस, सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात तक प्रैक्टिस चली, प्रैक्टिस खत्म, प्रैक्टिस होते के बाद ही हम सारे अपने आप को रिफ्रेश करने एक रूम में इकट्ठे होते थे और वहीं गाने वाने चला के उनो खेल रहे हैं, ठीक है, डाइट कोक पी रहे हैं, मंगा रहे हैं मस्त अपना, मतलब खाना पीना चल रहा है उधर, सब मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा के डांस कर रहे हैं, जिसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो डांस कर रहा है, कोई नींद से उठ के आ गया मस्त कह नहीं यार मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब ये है कि
0: चिल मोड,
1: सारी रिहर्सल के बाद सब जब एक साथ बैठते थे ना तो चिल मोड हो जाता था, मतलब वो सारे पूरे दिन की थकान निकल जाती थी।
0: कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक शो से पहले कितना समय आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए?
1: एक शो से पहले जैसे जिस दिन शूट होता है उसके एक दिन पहले टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल पे पूरा दिन हमारा शूट होता है। टेक्निकल शूट हो गया 24 घंटे, मतलब नॉट 24 घंटे, जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ रात को 11 बजे तक टेक्निकल शूट चल रहा है, फिर उसके अगले दिन दोबारा 9 बजे स्टार्ट हुआ 11 बजे शूट चल रहा है, और मंडे ट्यूसडे शूट होता है, सैटरडे संडे वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है। तो जैसे ही हमारी एक शूटिंग खत्म हुई, एक शूटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमने गाना होता है वो शूटिंग खत्म होने के बाद ही हमें गाने मिल जाते हैं कि आपको अगले वीक ये गाने गाने और कल से तुम्हारी दोबारा बैंड रिहर्सल। मतलब शूट अगर रात को 12 बजे खत्म हुआ
0: right.
1: तो हमें 11-12 घंटे का सब में रेस्ट ले लिया, और आई थिंक इनफ होता है इतना रेस्ट, 11-12 घंटे का रेस्ट लेके सो के आराम से, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे हमने क्या क्या करना है उसकी मीटिंग चालू। फिर सेम प्रोसीजर वही लूप में चलता रहता है, थीम्स चेंज होती रहती हैं, नेक्स्ट वीक ये आर्टिस्ट आ रहे हैं तो इनके गाने हम गाएंगे, नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा जैसे आशा भोसले जी को हमने करना है सेलिब्रेट करना है तो वो हम गाएंगे, फिर ललता, फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी का वो आगे से, मतलब कि शूट खत्म होते कि 1 घंटे बाद ही हमें नई लिस्ट मिल जाती थी कि ये अब उन्हें अगले वीक गाना है,
0: मस्ती चलती जा रही है बस। और जब मस्त मौला हो जाते हैं आपके दिमाग में कौन सा ऐसा गाना आता है, इसलिए मैंने वो वाइब पूछा था आपसे।
1: मस्त मौला होके तो यार
0: एकदम कि अब कोई फिकर ही नहीं।
1: मैंने बोला मेरे को तो दोनों ही सिचुएशन में मैं गाने ही गाता हूँ, और ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं यही मतलब पर्टिकुलर एक यही सॉन्ग गाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब ये होता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या मैं सबसे ज्यादा गाना सुन रहा हूँ तो वही गा देता हूँ।
0: हाँ तो एक हो जाए ना कुछ लाइन। एनी पार्टी सॉन्ग,
1: गाना तो गाना पड़ेगा। पान पुदीना देखा नक्का नगीना देखा चिकनी चमेली देगी चिकना कमीना देखा चांद ने चिटर होके चीट किया तो सारे तारे बोलेगी।

0: माने ना,
1: क्या बात है, हम भी नहीं मान रहे हैं बैक टू बैक। चलिए, इंडियन आइडल में आपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेस दी, आपका फेवरेट कौन सा था, सबसे फेवरेट, जो सबसे, आज भी सबसे टॉप पे रखेंगे आप, कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता?
0: मतलब बेस्ट मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो अपना गाया है बिल्कुल 100% देके गाया है, बट कुछ गाने, मतलब नॉट एक, कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला ऑडिशन तेरी यादों में खोया रहता हूँ, वो हो गया। उसके बाद गाना कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तो वो, और एक एपिसोड में दिलेर मेहंदी पाजी भी आए थे, उन्होंने गाया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जा। तो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, जब थीम चल रही होती है ना, उसके बीच में जब ऐसे ही गाने गाने को मिलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी अलग ही होती है। मैंने आपको बताया थीम चल रही थी 60s 70s 90s, सेलिब्रेटिंग आशा भोसले जी, सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी, सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार जी, सेलिब्रेटिंग रफ़ी साहब। तो उस जोन से निकल के जब ये अपने जोन में आने का मौका मिलता है ना, तो फिर वो अलग एनर्जी, इसलिए ये सब मेरे फेवरेट हैं। हो जाएगी बल्ले बल्ले, बदतमीज दिल, और जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये सब जब गाने का मौका मिलता है तो फिर वो सी मेरे सारे ही फेवरेट हैं।
1: ठीक है, टाइम फॉर द रैपिड फायर, सारे सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं, और क्या कहूं, कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल का रहा है। चलिए, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कीजिए, वन वर्ड,
0: फियरलेस।
1: फियरलेस। नेक्स्ट इज लता मंगेशकर या आशा भोसले?
0: आई पिक आशा भोसले जी।
1: ओके, अरिजीत सिंह या सोनू निगम? अच्छा। जल्दी जल्दी, रैपिड फायर है सर।
0: अरे यार, अरिजीत सिंह।
1: ओके, चलिए, वेरी गुड। स्टेज शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग।
1: सबसे पसंदीदा राग कौन सा आपका?
0: राग राग राग राग राग दरबारी।
1: ओके, पसंदीदा खाना?
0: नॉनवेज।
1: ओके, एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो आप कभी भी गा सकते हैं, कभी भी गुनगुना सकते हैं 24/7, सोते सोते भी उठा दे तो आप कहेंगे ये गा सकता हूँ।
0: की बोलूं दुनिया था।
1: ओके, एक लाइन के साथ, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम।
0: ओके, ओ की बनू दुनिया दा, सच्चे पातशाह गुरु जाने की बनू दुनिया दा, है अल्लाह।

0: क्या बात है। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा?
1: मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा
0: दमन राज, मन पे राज करने वाला है, कुछ और एनीथिंग जो भी माइंड में आ रहा
1: हूँ। हार्ट थ्रोब। हार्ट थ्रोब।
0: ओके, अगर आपको आज अपने बचपन वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले मनराज, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे कि हमने कर लिया या कुछ और बाकी अभी?
1: मैं उससे यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच ये सब सपने देखने के लिए, बिकॉज नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
0: क्या बात है, एक मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो आकाशवाणी ऑडियंस है उनके लिए कुछ?
1: मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है ये सब। हार्ट थ्रॉब, ड्रीम बॉय, ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी एल्बम्स आएंगे, जितने भी EPs आएंगे और जितने भी शोज होंगे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, और आप लोग भी अपना प्यार देने में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।